मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। पांच बजकर 58 मिनट हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 6 बजने को है। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म

0: विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेब और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए सामूहिक स्वर में ये देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार विश्व से ये भजन। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हरिहरन व साथियों से हनुमान जी की आरती।
1: भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त की पुकार ही आरती है। आरती

हनुमान जी की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बुंदेली सुगंध। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बुंदेली कहानी संस्कार। कहानीकार होंगे अजय मोहन तिवारी। 7:30 पर आनंद दीजिएगा फिल्म संगीत का। आठ बजकर तीस मिनट पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे ढोंडुताई कुलकर्णी से गायन राग कबीरी भैरव। 9 बजे लोकरंग में आज कलाकार हैं रामलखन सेन। 9:30 पर एक ही गीतकार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे गीतकार प्रसून जोशी के लिखे कुछ फिल्मी गीत।

10:05 पर आप सुनेंगे पत्रिका कार्यक्रम खेल पत्रिका। इसमें हम आपको सुनवाएंगे वार्ता ओलंपिक खेल और इतिहास। वार्ताकार होंगे विनय कुमार अहिरवार। 10:35 पर आनंद जी का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम है। हमारी दोपहर की सभा हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे सुनेंगे महिला कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे वार्ता संस्कारों की पहली पाठशाला परिवार। वार्ताकार होंगी काजल विश्वकर्मा। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युववाणी युवा साथी में सुनेंगे वार्ता धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। वार्ताकार होंगे रूपेश साहू। इसके अलावा एक और वार्ता पेड़ों का प्राकृतिक महत्व। इस वार्ता के वार्ताकार हैं अतुल विश्वकर्मा। शाम 5:40 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। 6 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में शाम को कलाकार होंगे जगदीश यादव। 7:20 पर महिलाएं अपने कार्यक्रम घरनी में सुनेंगी। श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी, प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। इसके अलावा वार्ता मृदा परीक्षण आवश्यकता उपयोगिता एवं विधि। वार्ताकार होंगी अदिति चौरसिया। आठ बजे आकाशवाणी भोपाल से मन प्रसारित करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आनंद लीजिए का फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित रील राष्ट्रीय मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता क्रिएटर धर्मेंद्र लोधी से बातचीत। आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे 9:15 पर कार्यक्रम स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन। रात्रि 10 बजे आनंद दीजिएगा श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन भावन का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेब और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती किसानी। विषय है केचुआ वर्मी खाद का उत्पादन।
1: पंच भैयारो, आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं उन पंचन के लाने जो उनके खास तौर से जैविक खेती में केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करो चाहू थो। तो भैया हम अपन का बता दें कि ई के लाने अपन का करने हैं कि अगर अपन सोच रहे कि हमें वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने तो ऊ की योजना पहले से अपन का बना लेने हैं। जो केचुआ ई के लाने सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं उनको नाम है भैया आईसीनिया फोर्टिडा या यूडीलस यूजनी। ये दो प्रजातियां हैं जो उनके वर्मी कंपोस्ट खाद बनावे के लाने बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी जाती है भैया। अब ई की कछु तकनीक बात सो हम अपन से बताएं कि अपन का जैसे मान लो स्थान को चयन करने तो अपन कैसे करें। पहले देख ले भैया कि जो वर्षा यानी पानी है, जब पानी बरसे तो वह ऊ जांगा पे इकट्ठो न होत हुए, तो ऐसे स्थान को अपन का चुनाव करने। ऊ के आसपास पानी हो वो जरूरी है ताकि अपन जो कार्बनिक पदार्थ है उन्हें तत्काल नमी पहुंचा सकें, उन्हें गीलो कर सकें और हमेशा होते कि अपन निगरानी कर सकें। कैसे कि जो अपने केंचुआ होत ना तो उनके दुश्मन सोई भैया बहुत होत। अपन ने देखो हुए कि चाहे अपने मछली पकड़े वाले भैया हों, चाहे सांप हैं, मेढक है, छिपकुली है, चिड़िया है, दीमक है,

0: लाल चीटी है जिब यह केचुअन का बहुत जल्दी क्षति पहुंचा देते हैं। तो जिन नुकसान न पहुंचा पाए ईके लाने भी अपन का अच्छी तरह से इनकी व्यवस्था करने हैं। फिर अपन का क्या करने, अपन का जो है 50 से लेकर 75 टन प्रतिवर्ष बर्मी कंपोस्ट खाद को अगर उत्पादन करने तो अपन का 12x20 फुट आकार को पक्को प्लेटफार्म बनाने है। ऊके ऊपर 12x25 फीट आकार को शेड सोई भी है, छाया जी का अपन बोलत वो सोई बनवाने पर है, जिसे के अपने छायरो बनो रहे और बरसात को पानी उस शेड के अंदर ना जावे, यानी जो अपने छायरो बनाओ उते पानी बरसात को ना जाओ चाहिए। जो अपना प्लेटफार्म अपन ने तैयार करो तो ऊके चारों ओर 2 फीट ऊंची दीवार बना के दीवार के ऊपर से शेड की ऊंचाई तक मुर्गा जाली अपन जरूर लगा देने, जिसे कहा हुए कि केंचुआ के जो दुश्मन है उन दुश्मन से अपन अपने केंचुअन का बचा सकते हैं। इमें भी है जो अपना प्लेटफार्म बनो उमे 3x18 के 3 बड़े 4 इंची मोटी बालू जी अपन बजरी का ऊपर से 1-2 इंच मोटी परत घास फूस की लगा दो चाहिए। ई के बाद 2 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची तह बना के अपन गोबर की तह बना देने, फिर मिट्टी डाल देने, जिसे के जो अपने केंचुआ हैं वे आसानी से इसे खा के और फिर अपने जो है केंचुआ खाद को निर्माण कर सके। अपन भी यही में जैसे जो भी जानवर अपने घर हैं अपन किसान पंच हैं तो उनको गोबर चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो है ना, घोड़ा की लीद है, मुर्गी फार्म को कचरा है, वो अपन ने जन बनाओ वो गड्ढा में अपन मिला सकते हैं। फसलन की जन तना है, पत्तियां हैं, खरपतवारन के अवशेष हैं, सड़ी गली बगीचा की पत्तियां हैं, गन्ना की खोई है, वह भी अपन इनमें डाल सकते हैं। लकड़ी को बुरादा, छाल, सूती फटे पुराने कपड़ा, कागज, कीड़ा के पत्ता, रसोई घर को कूड़ा और बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली जो सलेरी है वो भी भैया अपन इनमें उपयोग कर सकते हैं। इमें अब खासतौर से अपन विशेष ध्यान देने हैं वो भी अपने जो बेड बनाओ है अपन ने उमें हमेशा 35-40% तक नमी जरूर बना रखने हैं, और जो इनके शत्रु हैं सांप मेढक छिपकली वे जो है उनसे अपन केंचुन का बचाए रखने हैं। और ई खाद को उपयोग अपन खासतौर से दलहनी है, तलहनी है, खाद्यान है, मसाले वाली फसलें हैं, इन सब में अपन आसानी से इनको प्रयोग करें और उत्पादन निश्चित है कि अपन को बढ़े और अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज और खाद्यान्न अपन का प्राप्त हुए।
1: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती किसानी, विषय था केचुआ बर्मी खाद का उत्पादन। मीडियम वेब और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर लता मंगेशकर का है और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

रामचरितमानस के प्रारंभिक मंगलाचरण के पश्चात तुलसीदास ने सर्वप्रथम गणपति की वंदना की है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के पश्चात गुरु की वंदना की गई है, जो नर रूप में हरि के प्रतिरूप हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक लता मंगेशकर थी, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: कुछ लोग दूसरों पर हमेशा दोषारोपण करते रहते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास, आपके कार्यालय में, आपके समाज में अक्सर देखे जा सकते हैं। लेकिन दूसरों पर दोषारोपण करने वाले जरा अपने अंतरंग में झांक कर तो देखें कि वे कितने दूध के थोले हैं, वे कितने गहरे पानी में हैं, वे कितने नेक हैं और एक हैं और कितने निर्दोष हैं। दूसरों पर दोषारोपण करके स्वयं को दोषों से मुक्त मानने की प्रवृत्ति उस शतुर्मुर्ख प्रवृत्ति के समान है जो तूफान आने पर सिर रेत में छिपाकर समझता है कि अब चिंता की बात नहीं है। दरअसल जब हमारा मन दूषित होता है तो सर्वत्र दोष ही दोष नजर आते हैं, और जब हमारी दृष्टि में अमृत बस जाता है तब सृष्टि में सर्वत्र अमृत

ही अमृत नजर आता है, अर्थात गुण ही गुण नजर आते हैं। अवगुण किसमें नहीं है, कमियां किसमें नहीं है, गलतियां किससे नहीं होती। जो चलेगा वो गिरेगा भी, किसी ने सही कहा है। जो भूल कर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं, जो भूल पर पछताए उसे नादान कहते हैं, जो भूल से कुछ सीख जाए उसे बुद्धिमान कहते हैं, और जो कभी भूल

0: भी मकान क्यों न हो, उसमें एक न एक दरवाजा तो होगा ही। दरवाजा हीन मकान और गुणहीन व्यक्ति दोनों ही मिलना मुश्किल है। लेकिन हमारी दूषित दृष्टि उस गाय के स्तन से चिपकी हुई जोंक के समान है जो दूध नहीं खून पीती है। दूसरों के गुण भी हमें दोष प्रतिभाषित होते हैं और स्वयं के अवगुण भी गुण रूप नजर आते हैं। दूसरों के सरसों के बराबर छोटे दोष भी हमें जल्दी ही दिख जाते हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोषों को हम देखकर भी नहीं देख पाते। उसका कारण है कि हमारी दृष्टि हमारे दोषों पर नहीं जाती, हम सिर्फ सामने देख रहे हैं। हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने मन की गहराई को नहीं देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने घर में बैठे हैं, सामने फर्श पर एक कांच का गिलास रखा हुआ है। सामने से नौकर आया और उसके पैर की ठोकर से गिलास फूट गया। आप ये देखकर नौकर पर उबल पड़े, गुस्से में कहा, अबे अंधे, दिखता नहीं है? आकाश में देखकर चलता है क्या, मूर्ख कहीं का? यह एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष, मान लीजिए आपके पैर से ही वही गिलास फूट जाता, तब भी आप आसपास में काम कर रहे नौकर पर बरस पड़ेंगे कि तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि गिलास कहां रखना है, गिलास रखने का स्थान कहां होता है? देखिए, दोनों स्थिति में नौकर ही दोषी है। गिलास नौकर के पैर से फूटा तो वो अंधा हो गया, और तुम्हारे पैर से, तुम्हारी ठोकर से फूटा तो नौकर बेवकूफ हो गया। यह हमारी मनोवृत्ति है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा गुणधर्म है। लेकिन जीवन में यह बहुत जरूरी है कि व्यक्ति दूसरों के दोषों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ गुणग्राही बने, यानी कि दूसरे के गुणों को देखने वाला बने। यदि दोष देखना है तो आप अपने आप में देखिए। जब आप अपने दोषों को देखना शुरू कर देंगे तो निसंदेह आप में कोई दोष नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब आप दोष को देखेंगे तो उसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे, और दोषों को दूर करने से आपका मन स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, आपका तन स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, आपके जीवन जीने की कला बदल जाएगी और आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन का निर्वहन कर पाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव अष्टपञ्चाशद् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्मविभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम् अपि पद्मविभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल

0: राज्यत्वेन घोषितम्। एतदन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थिति अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मन्त्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है।

शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर, आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक

0: सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा है कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर वन स्थान पर है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ यह फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान, परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल, ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, नर्मदा

पुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नवतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित 5 अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आबा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेब और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बुंदेली सुगंध। इसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं बुंदेली कहानी संस्कार। कहानीकार हैं अजय मोहन तिवारी।
1: कविता आज फिर के उदास बैठी हती। वह सोच रही थी जाने कैसे कटे है हमारी जा नीरस जिंदगी का इको नाव जिंदगी है मुए कबलो ई तरह से तिल तिल के जीने पड़े है का ई जन्म में हमारे भाग में कष्ट ही कष्ट सहबु लिखो है का ई जन्म में सुख हमारे भाग में नैया। तबई मताई की आवाज से वह चौंक सी परी मानो वह सोच से जागी भई हो। मताई ने फिर के तान के पुकारो का ई तरह बैठी बैठी रोटियां तोड़त रहे या कछु चौका बर्तन।

शायद उकी एक बजाय उके ब्याव की सोच फिगर चिंता रही हुई है। लेकिन कविता तो कम से कम 2 साल तक ब्याव नहीं करन चाहती, कैसे कि वे तो अबे पनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने हती और अबे तो बा एमए प्रथम वर्ष में ही पढ़ रही हती। उम्र भी तो अबे ज्यादा नहीं हती, मात्र 20 बरस की। लेकिन पिता की जिद की अंगाई उनकी एक नहीं चलती। पिता तो बस उनके ब्याह की रट लगाए रहते, मोड़ा को देखवे कहूं कभी कभार ही जाते और ज्यादा हाथ पैर नहीं मारते। किंतु कविता के सामने ही उनके ब्याह की शीघ्रता की चर्चा घर में रोजों करत रहती। रोजों अपने ब्याह की बातें सुनत सुनत कविता के कान पक गए थे। कविता को अब तो ब्याह के नाम से ही चढ़ोन लगी थी। कभू कभू तो कविता पिता से कह देती कि का मैं इतेक बुरी लगन लगी हूँ कि तुम मोए ई घर से भगावे की जल्दी करन लगे हो। पिताजी का जवाब देते, सुन के चिमाई साध लेते। लेकिन उनकी मताई की जवान कैची की तरह चलती, तोड़ तई काटती, का तो जिंदगी भर तई परे परे खिलात रहे हैं। लोग का कहे हैं कि जवान मोड़ी घरे है और मताई बाप को कोनो चिंता नहीं है। लेकिन सांसी कही आए तो मताई सो न चाहती कि सुनीता को ब्याह जल्दी से हो जाए। कैसे कि बे तो है जोन घर को सबरो काम काज पने हाथन से करत रात है। ठीक एक नौकरानी की तरह दिन भर काम में जुटी रात है, वो भी बिना पैसा के। और मताई हती की बस दिन भरे हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती या फिर पलका पे महारानी की तरह आराम करात रहती। पानी तक अपने हाथ उठा के नहीं पियती। बा तो दिन भर कविता को ही कोसत रहती जैसे उकी दुश्मन हूँ और मानो बा उसे अपने पिछले जन्म को बदला ई जन्म में ले रही हूँ। कविता की एक सहेली हती आरती, जो कि पड़ोस में ही रहती। जब कभो भी कविता बहुत परेशान एवं उदास होती तो उसे मिलके और बातें करके अपने मन को हल्का कर लेती। आरती भी वे समय समय पे सही सलाह देके उको गम हल्का करत रहती और वे दिलासा दिला रहती कि सब ठीक हो जाए है, नोनो टेम आंदो। लगत है कि अबे तुम्हारा वक्त खराब चल रहो है, धैर्य रखो। कविता सो आरती की बात मानती, माने भी काए नहीं, पक्की गुनिया जो हती और एक संगे एक ही कक्षा में पढ़ती। आरती को एक भाई हतो संजय, जो कि कविता के ही हम उम्र को हतो और आकर्षक व्यक्तित्व को स्वामी। वो सुनीता को मन ही मन बहुत चाहतु, लेकिन अपनी चाहत को उजागर करवे की हिम्मत अवेलो नहीं जुटा पाओ तू। दिल की बातें ओठन तक नहीं आ पा रही थी। कविता सो संजय की ओर आकर्षित होने लगी थी। शायद उनके दिल में भी संजय के लाने तनक सी जांगा हती, लेकिन वह सोऊ सामे कछु भी प्रकट नहीं होन देती। कैवे को मतलब आग दो तर्पण से लगी हती, पहल को करवो नहीं चाहत तू। संजय की अवे नई नई नौकरी प्राइवेट कंपनी में लगी हती, 10,000 को महीना मिलत तू। वैसे कही जाए तो पैसा की कोनो कमी तो उगे हती नहीं, कैसे कि उके पिताजी सास की सेवा में बड़े अधिकारी हती। लेकिन वो अपने पैरन पे खुदाई की दम पे खड़ो हुन चाहतु। वे बाप की कमाई को तनकऊ भी घमंड नहीं हतु। मृदु भाषी शांत और गंभीर स्वभाव को हतु। उको शायद जेई कारण हतु कि कविता जैसी सीधी सादी मोड़ी को मोड़न से बातें करवे तो दूर की बात है, उकी शक्लें तक देख वो पसंद नहीं तो वह भी संजय की ओर खिंची चली आई। आरती के जन्मदिन की पार्टी में उन दोनों के बीच बातचीत को जो सिलसिला शुरू भाव तो वो कवे धीरे धीरे प्यार में बदल गओ, उन्हें पतो ही नहीं चलू। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करन लगे और दो जिस्म एक जान हो गए। ई प्रकार से कवे 2 साल बीत गए, पतो ही नहीं चलू। संजय अब शादी से कविता से शादी करवे के लाने जोर देन लगू तू। लेकिन कविता है कि अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ ब्याह करवे की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उनके संस्कार ऐसो करवे से रोक रहे थे। संजय और आरती के समझावे पे भी कविता शादी के लाने तैयार नहीं हो रही थी। बा कहती कि मैं अपने 5 भाई बहनन में सबसे छोटी और यदि मैंने अपनी मर्जी से माँ बाप के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली तो बाकी बहनन को का हुए, उनको ब्याह कैसे हुए, समाज में हमारा परिवार बहुत बदनाम हो जाए है। कभों कभों तो कविता को अपना जीवन बहुत नीरस और बेरंग लगत तू।
और कभों कभों तो उके मन में

0: आत्महत्या करवे जैसे कुविचार मन में आन लगती, लेकिन संजय के प्यार की डोर कविता को अवेलो जीवित रखे थी। संजय से वह प्यार तो बहुत करती, लेकिन उसे ब्याह करवे के लाने तैयार नहीं हती। संजय ने कविता के नीरस जीवन में रंग भरवे की भरपूर कोशिश करी थी, लेकिन शायद संजय के प्यार के रंग पक्के नहीं हते, जो कछु दिनन बाद धुंधले पड़त गए। आखिर कब तक संजय कविता की लाने इंतजार करत रातु? उके लाने उके पिता ने एक मोड़ी पसंद कर ली, उको नाव प्रतिभा हतु। बावी सुंदर पढ़ी लिखी और संपन्न घर से हती। जब संजय को ब्याह के लाने के लिए दबाव डालो गो तो वो भी प्रतिभा से ब्याह करवे के लाने तैयार हो गो, लेकिन वो कविता को भूल नहीं पा रहा तू। कविता की जिंदगी में जो कछु दिन संजय के रूप में बाहर बन के आए थे, वे सौ चले गए और उनकी जिंदगी फिर से नीरस हो गई। शायद भगवान ने उनकी किस्मत में जेव लिखो हुए। कभों कभों कविता जा सोचती कि अवेलो बा ई जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा पाएगी, जा शायद अबे हुए कछु दिन और ऐसे ही गुजारने पड़े, थोड़ो इंतजार करना पड़े, या नीरस व मजबूर बेवस जीवन तभी तक है जब तक कि उको ब्याह नहीं हो जाते, ससरार में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर है, वा ई शुभ घड़ी की बाट जोहती अपने दिन किसी तरह से काट रही थी। लेकिन अब वा कर ही का सकती, केवल सोच समझ के अपने दिल को तसल्ली ही दे सकती और कछु देर में रोके अपनो मन हल्का कर लेती। शायद उके जीवे को जी क्रम बन गओ हतु, दामन खुशियों में भरने के लाने अबे उए और बाढ़ जोहने पड़ेगी, कितेक दिना जो ऊपर वालो ही जानत है। अब कविता जा सोच के ही संतोष कर लेत है कि हम ई भारत जैसे संस्कार प्रधान देश में एक तनक से गांव में रात हैं, जी में लोगन में चाहे वे कोनो जाति धर्म के हुए, उन्हें अपने समाज के रीति रिवाजों को मानने में ही सबको भलो होत है। जे कोई विदेश नैया या कोनो बड़ो शहर नैया कि उते लव मैरिज कर लो और कछु दिन बाद फिर छोर छुट्टी करके दूसरो ब्याह चालू। इते तो ब्याह एक बेर होत है और अपनी ही जाति के लोगन से होत है, कोनो दूसरी बिरादरी में नहीं। इते ब्याह एक संस्कार मानो जात है, जी में जीवन भर साथ निभावे को वादा करो जात है और निभाव सो जात है। यही से हमारे देश की संस्कृति और पहचान अवेलो बनी भई है और जीवित है। संजय से मताई बाप की मर्जी के खिलाफ ब्याह नहीं करवे के निर्णय पे अब कविता को कोनो दुख नहीं रहेगा। उके मन को मैल उके उच्च विचारन ने धो दाओ। संजय के रूप में आओ प्यार को एक तूफान उके उच्च संस्कार को नहीं मिटा सको। कविता को अपने निर्णय पे गर्व भाओ कि उन्हें तो अपनी संस्कृति मर्यादा और कुल की लाज राख लई, अपने मताई बाप के दई संस्कार को बनाए राखो।
1: बुंदेली सुगंध कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बुंदेली कहानी संस्कार। कहानीकार थे अजय मोहन तिवारी। मीडियम वेब और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में। इंदिवर के गीत को संगीत दिया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म आम्रपाली से। शैलिन के गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आम्रपाली में। शब्द रचना शैलेंद्र की थी, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म मिस मैरी से, आवाज लता मंगेशकर और आशा भोसले की, संगीत हेमंत कुमार का और गीत राजेंद्र कृष्ण का।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले को फिल्म मिस मैरी में। राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीत दिया था हेमंत कुमार ने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म सलामे मोहब्बत से। अंजुम जयपुरी के गीत को संगीत दिया है विपिन बाबुल ने और आवाज है तलत महमूद की।

0: सलामे मोहब्बत फिल्म में भी आप सुन रहे थे तलत महमूद को। अंजुम जयपुरी के गीत को संगीत दिया था विपिन बाबुल ने।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में। इन दीवर के गीत को संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म एक बार मुस्कुरादों में। इन दीवर के गीत को संगीत दिया था ओपी नैयर ने। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं तलत महमूद को फिल्म डाक बाबू में, प्रेम धवन का गीत संगीत धनीराम का।

अभी आप सुन रहे थे तारक महमूद को फिल्म डाक बाबू में। प्रेम धवन के गीत को संगीत दिया था धनी राम ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 8 बजने को है समाचार। प्रभात का अनुप्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे हैं। कृपया इंतजार करें।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर वनश्याम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी।

0: और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
1: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रूपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है।

0: वर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में

0: में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshi Mitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
4: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ढोंडुताई कुलकर्णी से गायन राग कबीरी भैरव। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज कलाकार हैं रामलखन सेन। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं ये देवी गीत।

Akashwani at 90. लोकरंग कार्यक्रम आप आकाशवाणी के छतरपुर के केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें आज कलाकार हैं राम लखन सेन, इनके साथ संगत की है ढोलक पर आत्माराम दुबे ने और बेंजो पर लखनलाल ने। आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं एक जल संरक्षण कछियाई, स्वर राम लखन सेन का है।

0: राम लखन सिंह से अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण कछियाई।
1: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
2: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: आइए कार्यक्रम में राम लखन सिंह से सुनते हैं ये सड़क सुरक्षा पर लोक शैलीबद्ध गीत।

0: The advanced machines उपलब्ध हैं. Cancer Hospital and Research Institute, Cancer Hills, मंदिर की माता.
1: आइए अब सुनते हैं राम लखन सेन से ये गारी.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग, इसमें आज कलाकार थे राम लखन सेन। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही गीतकार, इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे गीतकार प्रसून जोशी के लिखे कुछ फिल्मी गीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे थे शंकर महादेवन को फिल्म फिर मिलेंगे में। शब्द रचना प्रसून जोशी की थी, संगीत शंकर ईशान लॉय और भावता राजा का।

90. कार्यक्रम में आगे सुनते हैं एक बार फिर शंकर महादेवन को फिल्म लंदन ड्रीम्स में। प्रसून जोशी के लिखे गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

लंदन ड्रीम्स। इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन को, संगीत शंकर ईशान रॉय का था और गीत प्रसून जोशी का। प्रसून जोशी लिखित फिल्म गीत की फिल्म अगली है ब्रेक के बाद। आइए इस गीत को सुनते हैं। इसमें आवाजें मोनिका डोंगरा, विशाल ददलानी की है, संगीत विशाल शेखर का।

ब्रेक के बाद इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोनिका डोंगरा और विशाल ददलानी को। प्रसून जोशी के लिखे गीत को संगीत दिया था विशाल शेखर ने।

आइए आप सुनते हैं फिल्म तेरी मेरी कहानी का ये गीत। आवाज़ वाजिद की है, संगीत साजिद वाजिद का, और गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने।

वाजिद को भी आप सुन रहे थे फिल्म तेरी मेरी कहानी में। साजिद वाजिद का संगीत था, शब्द रचना प्रसून जोशी की। कार्यक्रम का अंतिम प्रसून जोशी रचित गीत फिल्म सत्याग्रह से। आवाजें सलीम मर्चेंट और श्रद्धा पंडित की हैं और संगीत सलीम सुलेमान का।

पतंगा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम और साथियों की आवाज। राजेंद्र किशन ने गीत लिखा है, संगीत है सी रामचंद का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी, रोहित, लल्लू राम, पूरन, रोहित और छोटू के साथ डुंडुन और समस्त परिवार इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है किशोरी बोस, प्रियंका, बसंत, सरोज, अजीत, मोनिका, हिमांशी और नितिन ने। इनका साथ दिया है आशीष और ममता ने भोपाल से। तो आइए सुनते हैं पतंगा फिल्म का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं बेमिसाल फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, सुरेश वाडकर और साथियों ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा इस गीत को सुनना चाहते हैं। रूपाली मालवी, अर्चित मालवी, सुमन मालवी का पत्र हमें मिला है होशंगाबाद रोड भोपाल से। तो आइए सुनते हैं बेमिसाल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं जंगली फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। हसरत जयपुरी के बोल है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय इस गीत को सुनना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और अमित के साथ हैप्पी राय ने ये गीत सुनने की ख्वाहिश जताई है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला पंचतंत्र। आज सुनिए इसकी 13वीं कड़ी।

0: जिसमें चार युवक धन की लालसा में हिमालय की ओर गए। एक को तांबे की खान मिली, दूसरे को चांदी और तीसरे को सोने की खान। चौथे ने सोचा आगे अवश्य ही रत्नों की खान मिलेगी। उस लालच में वो आगे बढ़ गया और तीक्ष्ण धार वाले चक्र को सिर पर धारण कर रक्त रंजित हो गया। स्वर्ण प्राप्त करने वाला मित्र उसे खोजता हुआ वहां पहुंचा और उसकी ये दशा देखकर उसको मूर्खता के लिए कोसा। उसने चक्रधर को मूर्ख युवकों की कथा सुनाई।
1: मित्र चक्रधर सुनो।
2: कहो मित्र।
1: किसी नगर में चार युवक रहते थे। उनकी आपस में बड़ी मित्रता थी।
2: अच्छा।
1: बाल्यकाल में वे विद्या अध्ययन के लिए कान्य कुब्ज देश चले गए। एकाग्र चित्त होकर 12 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद चारों मित्र उद्भट विद्वान हो गए। एक दिन चारों ने परामर्श किया।
2: क्या?
3: मित्रों, आज हमें गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
4: हाँ, हम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। गुरु की आज्ञा लेकर अब हमें चलना चाहिए।
5: आप सच ही कह रहे हैं, परंतु हमें अभी घर नहीं जाना चाहिए। अभी तो हम अन्य देशों में पर्यटन करके सभी प्रकार का आनंद लें। इन 12 वर्षों में हमने विद्या ग्रहण के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया।
6: ठीक है, यदि ऐसा ही आप सबका विचार है तो मैं भी सहमत हूँ, परंतु चलने से पहले हमें गुरुदेव की आज्ञा लेनी चाहिए।
7: अवश्य अवश्य अवश्य।

0: गुरुदेव से आज्ञा लेकर चारों पूर्व दिशा की ओर चल पड़े।
1: अच्छा,
0: कुछ दूर जाने के पश्चात मार्ग को दो तरफ जाते हुए देखा। अब किस मार्ग पर चलना चाहिए ये निर्णय करने के लिए वे एक स्थान पर बैठ गए। अब एक युवक ने ग्रंथ निकाला और देखना आरंभ किया।
1: अच्छा,
2: किस मार्ग पर चला जाए? यहां तो दो रास्ते हैं।
3: वो देखो मित्र, किसी वणिक की शव यात्रा जा रही है।
4: ये देखो,
3: क्या
4: ग्रंथ में लिखा है, महाजन जिस मार्ग से जाए अन्य व्यक्तियों को भी उसी मार्ग से चलना चाहिए।
3: अच्छा,
0: चारों मित्र शव यात्रा में शामिल होकर उसी मार्ग से चल दिए। अब देखो चक्रधर, महाजन का अर्थ महान लोगों से था, न कि महाजन यानी वणिक। पर उन युवकों को समझ आए तब ना। उधर श्मशान पहुंचकर उन लोगों ने एक गधे को देखा। तुरंत ग्रंथ निकाला गया।
1: अच्छा,
5: मित्रों तनिक ध्यान दें।
6: इसमें लिखा है, उत्सव के समय दुख में दुर्भिक्ष पड़ने पर, शत्रुओं से घिर जाने पर, राजसभा तथा शमशान में जो मिले वह स्वजन है।
3: मित्रों, अर्थात ये गर्दभ हमारा स्वजन है, तो इसे तो हमें गले लगाना चाहिए। आओ मित्रों, गले लगाओ इसे। बड़ा अच्छा लग रहा है।
2: भद्रगण, हम अपने स्वजन को लेकर यहाँ व्यस्त हैं, परंतु दक्षिण दिशा से तीव्र गति से आने वाला वह कौन है, जरा देखो तो।
4: मित्र, ये तो ऊंट है।
3: अच्छा,
4: ये तो

0: अत्यंत तेज गति से चलता है।
1: मित्रों चिंता ना करो, चिंता ना करो। हमने ग्रंथ खोल लिया है।
0: अच्छा,
1: अब देखो इसमें लिखा है धर्म की गति तीव्र होती है।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: हो ना हो ये अवश्य ही धर्म है।
0: धर्म है?
1: हाँ।
2: क्या ये धर्म है?
1: हाँ।
2: तब तो हमें अपने स्वजनों को धर्म के साथ जोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। आइए मित्रों इस गर्दभ को ऊंट के गले में बांध देते हैं।
1: हाँ, चलो मित्रों,
0: चलो चलो, चलो।

0: ये सूचना तब तक किसी ने गधे के मालिक को दे दी थी। लाठी लेकर उसको आता देख चारों युवक भाग खड़े हुए। भागते भागते वे एक नदी के तट पर पहुंचे।
1: अच्छा, फिर क्या हुआ?
2: थोड़ा यहाँ नदी के तट पे विश्राम कर लेते हैं।
3: विश्राम करते हैं।
4: अरे वाह, कितनी स्वच्छ नदी है। चलो इसमें हम स्नान कर रहे हैं।
3: चलो,
2: परंतु मित्र ठहरो, इस नदी की गहराई का तो हमें अनुमान ही नहीं है। अब कहीं कुछ हो गया तो
3: ठीक है, बिना जाने स्नान करना ठीक नहीं है।
4: परंतु मित्र, आपने कदाचित देखा ही नहीं, वो देखिए, एक पलाश का पत्र बह रहा है। डूबने पर पत्ता हमें पार उतार देगा, ऐसा ग्रंथ में लिखा है।
3: अच्छा?
4: हाँ, अब मैं तो चला स्नान करने। बचाओ, बचाओ।
3: अरे अरे मित्र, ये तो डूब रहा है।
1: अरे
3: अरे, वो पलाश का पत्र तो पता नहीं कहाँ डूब गया।
1: अरे
3: ये तो डूब रहा है, बचाओ भाई, मित्र से बचाओ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता।
2: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी आया।
3: कोई तो बचाओ उसे।
2: अपना हाथ बढ़ाओ, अपना हाथ बढ़ाओ, कुछ तो प्रयास करो भाई। अरे अरे, ये तो तुम्हारी चोटी हाथ में आ गई, अब क्या करूं? अब
5: चिंता ना करो, चिंता ना करो, मैंने ग्रंथ खोल लिया है।
3: पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो।
5: इसमें लिखा है, सर्वनाश होने की स्थिति में चतुर जन विनष्ट होने वाली वस्तु का आधा भाग छोड़ देते हैं।
3: अच्छा?
5: और आधे से ही संतुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि सर्वनाश दुसह होता है।
2: ऐसा लिखा है?
5: हाँ हाँ, यही लिखा है।
2: तो मैं इसका मस्तक काट लेता हूँ, आधे शरीर का मुंह छोड़ देता हूँ।
4: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

0: कुछ दूर जाकर शेष तीनों मित्र एक गांव में पहुंचे। ग्रामवासियों ने उन्हें अलग अलग घरों में निमंत्रित किया। पहले ने भोजन में घी चीनी से बनी सेवई को दीर्घ सूत्र विनाशकारी कहकर छोड़ दिया। दूसरे ने रोटी को अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थाई नहीं होती ये कहकर, और तीसरे ने वृत्ताकार बड़े को सदोष और आपत्ति कारक कहकर छोड़ दिया। तीनों ही भूखे रह गए, लोगों के उपहास के पात्र भी बने। हे चक्रधर, तुम लालच में आकर मूर्खता कर बैठे, इस कारण तुम्हारी ऐसी दशा हो गई।
1: नहीं भाई स्वर्ण सिद्ध, तुम्हारा कहना निरर्थक है, क्योंकि भाग्य की प्रतिकूलता से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं, और भाग्य के साथ देने से एक मूर्ख व्यक्ति भी आनंद उठाता है। भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी सुरक्षा के भी बची रहती है,

0: हिंसक पशुओं के मध्य वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भी जीवित रह जाता है और प्रयत्न पूर्वक घर में सुरक्षित व्यक्ति भी जीवित नहीं रह पाता। स्वर्ण सिद्ध
1: सुनो चक्रधर, सच्चे मित्रों की बात को अनसुनी करने वाला पछताता है, अर्थात अगर व्यक्ति स्वयं बुद्धिहीन है और मित्र का कहना भी नहीं मानता तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करता है। अतएव मैं कहता हूं, जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं होती उसे मित्रों की सलाह पर विचार अवश्य करना चाहिए। वैसे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सभी लोग लोभ के वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। मित्र, अब मुझे जाने की अनुमति दे दो जिससे मैं घर जा सकूं।
0: भद्र, विपत्ति काल में सहयोग करने के लिए ही धन एवं मित्र का संचय किया जाता है और तुम मुझे इस परिस्थिति में छोड़कर चले जाओगे। मित्र मित्र को छोड़कर निष्ठुरता पूर्वक जाने वाला नरक का भागी होता है, नरक का भागी।
1: हाँ चक्रधर, तुम ठीक कहते हो। यदि इस स्थान पर रहना संभव होता तो मैं अवश्य रह जाता, परंतु ये स्थान दूसरे के रहने योग्य नहीं है और इस चक्र से छुड़ाने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं है और तुम्हारी अवस्था भी नहीं देखी जाती। कहीं मैं ही विपत्ति में न पड़ जाऊं।
0: नहीं नहीं
1: नहीं बाबा, मैं तो चलता हूँ।
0: नहीं, स्वर्ण सिद्ध, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध, मैं इस विपत्ति में अकेला नहीं रह सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वर्ण सिद्ध।

और फिर ये कहकर स्वर्ण सिद्ध चला गया। चक्रधर किसी दूसरे लोभी की प्रतीक्षा में बैठा रह गया। सुधी श्रोताओं, यहीं पर पंचतंत्र का प्रकरण अपरीक्षित कारक समाप्त होता है। साथ साथ विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा रूपी पंचतंत्र भी पूर्ण हुआ। राजा अमर शक्ति के तीनों पुत्र अब मूर्ख नहीं थे, तीनों ही राजनीति के प्रकांड विद्वान बन चुके थे। आज 6 मास पूरे हुए। महाराज अमर शक्ति के लिए तो ये 6 मास 6 युगों की तरह बीते थे। सारी रात्रि आंखों में ही काटी थी उन्होंने। सूर्योदय होते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। मन में कई प्रश्न आ जा रहे थे।

0: हे कुल देवता, मैंने पंडित विष्णु शर्मा की बातों का विश्वास किया था। मेरे विश्वास की लाज रखना प्रभु, मेरे इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा? हे ईश्वर, आज समय कटता क्यों नहीं?
1: महाराज, धैर्य का फल मीठा होता है, आप तनिक भी संदेह ना करें। पंडित विष्णु शर्मा आते ही होंगे, वो वचन के बहुत पक्के हैं।
2: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा

0: तीनों युवराज के साथ आए हैं और दर्शन की आज्ञा चाहते हैं।
1: अरे वाह, उन्हें अविलंब दरबार में ससम्मान लाएं।
2: महाराज की जय हो। सुप्रभात महाराज।
3: प्रणाम पिताश्री।
1: आयुष्मान भवा। स्वागत है आचार्यवर। आपके लिए ही हम चिंतित हो रहे थे।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक पंचतंत्र का भाग 13। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Notata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण दिखी

पैर दिखा पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा इनसैट दिखा।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन किया। श्री चौहान ने इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सरकार और पार्टी संगठन से संबंधित मुद्दों के अलावा राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने धार स्थित भोजशाला में भव्य माता सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज शाम उज्जैन में आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव कल खजुराहो में आयोजित होने वाले 25वें काउंटडाउन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्य महिला आयोग में लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर जन सुनवाई शुरू हो गई है। पहले दिन कल 40 प्रकरण बेंच के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1 बजे हैं, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और हमारे ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला सभा।

मैं दमयंती वाजपेयी, स्वीकारिए मेरा नमस्कार। बहनों, जीवन में कोई भी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। एक छोटा सपना, एक छोटा प्रयास और आत्मविश्वास ही आगे सफलता की बड़ी कहानी बन जाती है। छोटी शुरुआत का अर्थ है अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानना और पहला कदम उठाना। चाहे वो घर से छोटा व्यवसाय शुरू करना हो, कोई कला सीखना हो या फिर समाज सेवा का काम करना हो, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे प्रयास से ही होती है। बहनों, आज हम ऐसी कई महिलाओं को देखते हैं जिन्होंने बहुत ही साधारण परिस्थितियों से शुरुआत की और समाज के लिए प्रेरणा बन गईं। किसी ने घर से बने अचार पापड़ से अपना व्यवसाय शुरू किया, किसी ने सिलाई कढ़ाई से पहचान बनाई तो किसी ने शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर अपने सपनों को उड़ान दी। शुरुआत भले ही छोटी थी लेकिन उनके हौसले बड़े थे। महिलाओं की सबसे बड़ी शक्ति उनका धैर्य और समर्पण है। यदि महिला ठान ले कि उसे आगे बढ़ना है तो कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकती। जरूरी ये नहीं कि शुरुआत कितनी बड़ी हो, जरूरी ये है कि शुरुआत सच्चे मन और सकारात्मक सोच से हो। हाँ, कई बार डर, असफलता और लोगों की बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। यदि हम गिरकर फिर उठना सीख जाएं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। दूसरों की नकारात्मक बातों से अधिक अपने आत्मविश्वास की आवाज सुननी चाहिए। कई बार महिलाएं अपने सपनों को केवल इसलिए दबा देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब शुरुआत करने में देर हो चुकी है। लेकिन बहनों, सच्चाई ये है कि सपनों को पूरा करने के लिए उम्र नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। इसलिए हम बहनों को चाहिए कि वे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने सपनों को महत्व दें। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रेरित होता है। एक शिक्षित, आत्मविश्वासी और सफल महिला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनती है। गन, गन, गन, गन।

किसी को वही देना जो वापस आए तो हंसकर ले सको, बात हो या व्यवहार, क्योंकि दुनिया गोल है और नियति तय। इस विचार के साथ ही आज का महिला सभा कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ।

0: गुलाब गैंग। अभी हमने इस फिल्म का गीत शिल्पा राव और मालविका ब्रह्म की आवाज में सुना। नेहा सराफ की रचना को संगीत दिया था सौमिक सेन ने।
1: बहना, जब बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, चलना सीखता है और सही गलत समझना सीखता है, तब उसके हाथ में कोई किताब नहीं होती। उसकी पहली गुरु होती है माँ, पहला विद्यालय होता है घर और पहली शिक्षा होती है संस्कार। इसीलिए कहा गया है, संस्कारों की पहली पाठशाला परिवार है। तो इस बारे में विस्तार से जानते हैं वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं काजल विश्वकर्मा।
2: आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे जीवन की नींव है, परिवार। अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन इस सामाजिकता का पहला पाठ उसे कहीं और नहीं बल्कि अपने घर के आंगन में मिलता है। इसलिए परिवार को संस्कारों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला माना जाता है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो वह भाषा, शिष्टाचार और नैतिकता नहीं जानता। वह एक कोरी स्लेट की तरह होता है। स्कूल जाने से बहुत पहले वह अपने माता पिता के बोलने के लहजे, उनके आपसी व्यवहार और उनके धैर्य को देखता है। बच्चा वही नहीं करता जो उसे कहा जाता है, बल्कि वह वही करता है जो वह अपने बड़ों को करते हुए देखता है। ईमानदारी, परोपकार और सेवा भाव जैसी भावनाएं किसी पाठ्य पुस्तक से नहीं बल्कि घर के बड़े बुजुर्गों के आचरण से आती है। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। इसका अभिप्राय उन गुणों और मूल्यों से है जो व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क को पवित्र कर उसे समाज व एक योग्य सदस्य बनाते हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष स्थान है क्योंकि ये व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। बिना संस्कारों के ज्ञान और संपत्ति भी एक बोझ बन जाती है। एक छोटा बच्चा मिट्टी के उस कच्चे घड़े के समान होता है जिसे जैसा चाहे वैसा आकार दिया जा सकता है। परिवार के सदस्य

बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। बच्चा अपनी मातृभाषा और संवाद करने की कला सबसे पहले सीखता है। संस्कारों का महत्व। संस्कार केवल पूजा पाठ या अभिवादन तक सीमित नहीं है। असली संस्कार वे हैं जो हमें कठिन समय में सही निर्णय लेना सिखाते हैं। समय पर उठना, अपना काम स्वयं करना और मर्यादा में रहना, ये गुण परिवार के अनुशासन से आते हैं। भाई बहनों के साथ मिलकर रहना और अपनी चीजों को साझा करना हमें त्याग और सामंजस्य सिखाता है। हमारी संस्कृति, त्योहार और परंपराओं का गौरव हमें परिवार ही महसूस कराता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल युग में, जहां मोबाइल और इंटरनेट का प्रभाव बढ़ रहा है, परिवार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। एक मजबूत परिवार ही एक वह सुरक्षा कवच है जो युवाओं के भटकाव से बचाकर सही दिशा प्रदान करता है। बदलते समय में परिवार की भूमिका। आधुनिक जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या और तकनीकी उपकरणों ने हमारे बीच संवाद को कम कर दिया है। जहां पहले खाने की मेज पर पूरे परिवार का जुटना आम बात थी, आज वही मोबाइल स्क्रीन और डिजिटल व्यवस्था ने पारिवारिक संवाद को सीमित कर दिया है। इन परिस्थितियों में विश्व परिवार दिवस हमें रुककर यह सोचने का अवसर देता है कि क्या हम अपने रिश्तों के लिए समय निकाल पा रहे हैं। आज के व्यस्त और तकनीकी युग में संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों ने ले ली है, जिससे परिवारों की पारंपरिक शिक्षा, भावात्मकता, जुड़ाव में कमी आई है। इसके बावजूद परिवार की भूमिका कम नहीं हुई है। अब भी बच्चे सबसे पहले अपने घर में ही जीवन के मूल सीखते हैं। ये आवश्यक हो गया है कि हम परिवार को एक मजबूत, सकारात्मक और नैतिक वातावरण प्रदान करें, ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। रिश्तों की डोर को कैसे मजबूत करें? संवाद बनाए रखें। खुलकर बात करना रिश्तों की बुनियाद होती है। अपने विचार, भावनाएं और समस्याएं परिवार के सदस्यों से साझा करें। एक दूसरे के लिए समय निकालें, चाहे वह साथ खाना खाना हो या शाम की चाय पर बातचीत। ये पल रिश्तों को गहरा बनाते हैं। सहयोग और समझदारी बढ़ाएं। हर सदस्य की भावनाओं का सम्मान करें और सहयोग की भावना विकसित करें। संयुक्त निर्णय लें। परिवार के निर्णय मिलजुल कर लेने से जुड़ाव और जिम्मेदारी की भावनाएं बढ़ती है। परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे पहली संस्था होती है, जहां वह जन्म लेने के बाद सबसे पहले जीवन जीने की कला सिखाता है। ये केवल खून के रिश्तों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसी पाठशाला है जहां मनुष्य का चरित्र, संस्कार, आचरण और मूलभूत सामाजिक मूल्य विकसित होते हैं। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि परिवार समाज की पहली पाठशाला है और सबसे करीबी कवच सुरक्षा कवच होता है। हम अपने माता पिता और बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार हमें जिम्मेदार और मददगार बनना सिखाता है। किसी भी परेशानी की स्थिति में परिवार के सदस्य अपनी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। अंततः स्कूल हमें अक्षर ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला हमें परिवार ही सिखाता है। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एक संयुक्त नागरिक की आवश्यकता होती है, और वह नागरिक केवल तभी तैयार हो सकता है जब उसके परिवार रूपी प्राथमिक शाला की नींव मजबूत हो। परिवार से प्राप्त संस्कार ही वह कवच हैं जो व्यक्ति को जीवन की हर बुराई से बचाते हैं और उसे सही मार्ग पर अग्रसर करते हैं। संस्कार वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और यह वह विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने परिवार को केवल सुख सुविधाओं का केंद्र न बनाकर उन्हें ज्ञान, प्रेम, मर्यादा और संस्कारों का केंद्र बनाएंगे। तभी संस्कार की पहली पाठशाला का उद्देश्य सार्थक होगा और मानवता का कल्याण संभव हो पाएगा। संयुक्त परिवार में दादा दादी और अन्य बड़े सदस्य भी बच्चों के संस्कार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों को कहानियाँ, अनुभवों और परंपराओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा देते हैं। दादा दादी बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित कराते हैं। उनके साथ रहने से बच्चों में धैर्य, सम्मान, सहनशीलता की भावना विकसित होती है। परिवार के बाद विद्यालय बच्चे

0: की दूसरी पाठशाला होती है। विद्यालय में शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा देते हैं। विद्यालय में बच्चे अनुशासन, समय पालन और सामूहिकता सीखते हैं। शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाई ही नहीं कराता, बल्कि बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाता है। समाज भी बच्चों के संस्कारों को प्रभावित करता है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। यदि समाज अच्छा हो तो बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छे मित्र, अच्छे पड़ोसी और सामाजिक वातावरण बच्चे को सही दिशा देते हैं। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे। आज का युग तकनीक का युग है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के बच्चों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। जहाँ तकनीक ज्ञान का माध्यम है, वहीं उसका गलत उपयोग बच्चों को संस्कारहीन भी बना सकता है। आज बच्चे परिवार के साथ कम समय बिताते हैं और मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं। इस कारण उनमें धैर्य, सहनशीलता और सामाजिक व्यवहार की कमी देखने को मिलती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को तकनीक का सही उपयोग सिखाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विद्यालय हमें डिग्री दे सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला केवल परिवार ही सिखाता है। यदि घर का वातावरण प्रेम, स्नेह, सम्मान और नैतिक मूल्य से परिपूर्ण है, तो वहाँ से निकलने वाले प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की अमूल धरोहर होगा। याद रखिए, संस्कार ही संसार में हमारी पहचान बनाते हैं।
1: संस्कारों की पहली पाठशाला परिवार। अभी हम ये वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी काजल विश्वकर्मा। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बीआर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
4: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: बहनों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सबको साथ लेकर चलो, सबकी खुशी का ध्यान रखो और अपने से पहले दूसरों को महत्व दो। वैसे तो ये भावना अपने आप में बहुत ही सुंदर है, क्योंकि त्याग और संवेदनशीलता महिलाओं की सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन जब दूसरों को खुश रखने की आदत अपनी खुशी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति पर भारी पड़ने लगे, तो यही आदत धीरे धीरे नुकसान का कारण बन जाती है। कई बार महिलाएं हर समय यही सोचती रहती हैं कि किसी को उनकी बात बुरी ना लग जाए, कहीं कोई नाराज ना हो जाए या फिर लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इसी कारण वे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और जरूरतों को दबा लेती हैं। वे उनकी हर बात में अपनी हामी भर देती हैं, जिसे वो मन से स्वीकार भी नहीं करती। शुरुआत में ये व्यवहार अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक रूप से थकने लगता है। और दूसरों को खुश रखने की आदत का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप स्वयं को ही भूलने लगते हैं। हम अपनी खुशी, आराम और सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। बहनों, लगातार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते मन में तनाव, चिंता और अकेलापन बढ़ने लगता है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि ना कहना गलत नहीं होता। यदि कोई काम हमारी क्षमता के बाहर है या उससे हमारी मानसिक शांति प्रभावित होती है, तो विनम्रता से मना करना बिल्कुल सही है। जब हम स्वयं को महत्व देते हैं, तभी दूसरे लोग भी हमारी भावनाओं की कद्र करना सीखते हैं। हमें ये समझना भी जरूरी है कि हर किसी को हमेशा खुश रखना संभव नहीं है। यदि हम अपने मन की बात कहें या किसी बात के लिए मना करें, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलत हैं। अपनी सीमाएं तय कीजिए और अपनी भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का सम्मान करना। हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए, अपने निर्णय पर भरोसा करना, अपनी पसंद को महत्व देना और अपनी खुशी के लिए समय निकालना बहुत ही आवश्यक है। सच्चे रिश्ते

वही होते हैं जहां व्यक्ति को उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी भावनाओं को भी सम्मान मिले। यदि कोई रिश्ता केवल त्याग और समझौते पर टिका हो तो वो लंबे समय तक मन को खुशी नहीं दे सकता। इसलिए आप अपना ध्यान स्वयं रखिए, अपनी पसंद का काम कीजिए और अपनी पसंद का गीत संगीत भी सुनिए। फिलहाल अभी सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी हमने नीति मोहन की आवाज में फिल्म पद्मावत का गीत सुना। सिद्धार्थ गरिमा के गीत को संगीत दिया था संजय लीला भंसाली ने।
1: और कार्यक्रम में अब फिर लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

बहनों, इस भीषण गर्मी के मौसम में आप सबने सत्तू तो जरूर बनाया होगा या फिर बाजार से मंगाया होगा, क्योंकि ये शरीर को ठंडक देता है, इससे पाचन बेहतर होता है, ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जो लंबे समय तक ऊर्जा देता है। इस मौसम में डिहाइड्रेशन से बचाने में भी मदद करता है। यानी सत्तू केवल एक भोजन नहीं बल्कि पारंपरिक भारतीय स्वास्थ्य का खजाना है। वैसे तो सत्तू को शरबत के रूप में ठंडा पानी, काला नमक, भुना जीरा मिलाकर खाते ही हैं, लेकिन सत्तू पराठा, सत्तू चीला, सत्तू लड्डू, सत्तू दलिया, मीठा सत्तू ड्रिंक, सत्तू भरवा बैगन और सत्तू कचौरी भी बनाते हैं। तो आज हम जानते हैं सत्तू की कचौरी बनाने की विधि। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 कप मैदा में आधा चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डालें, 1/3 चम्मच कलौंजी, 1/4 कप घी का मोयन देकर पानी से मैदा का सॉफ्ट डो बना लीजिए और सेट होने के लिए 20 मिनट तक ढककर रख दीजिए। तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल गर्म कीजिए, फिर इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 इंच अदरक और 3-4 हरी मिर्च दरदरा पीसकर डालिए। धीमी आंच पर सेकते हुए 1/2 कप सत्तू डालिए। अब इसी में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 1 नींबू का रस और 2 चम्मच दही मिलाना है। याद रखिए कि सत्तू को ज्यादा नहीं भूनना है, बस सारे मसाले सिक जाएं। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर डो की लोई बना लीजिए और कटोरी का शेप बनाकर स्टफिंग भरकर अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। अब हाथ से या बेलकर धीमी आंच पर दोनों तरफ सुनहरी होने तक तल लीजिए। हरी चटनी या सॉस के साथ सबको खिलाइए। और अब चलते चलते बताना चाहूंगी कि प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक की नहीं, सारे जीवन की पूंजी है, इसलिए रिश्तों को जरूर संभालिएगा। अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए दमयंती वाजपेयी को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: चिड़िया बड़ी उदास, प्यास बहुत कम है, कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी, धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत, चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे, बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात, हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल, पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर, नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। सुनवाते हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लोक संगीत में आप सुन रहे हैं प्रीतम बोदाना और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। आइए इन्हीं की आवाज में सुनते हैं अगला गीत।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे प्रीतम और साथियों के गाए लोकगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। इसमें सुनवाते हैं उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। पहले सुनते हैं मोहसिन अलवी की लिखी ये गजल।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना उमेश भट्ट की गाई कुछ गजलें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: पानी की हर बूंद है अनमोल,
2: बहने ना दें इसे बेमोल।
1: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
2: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है, बोल मजरू सुल्तानपुरी के आर डी बर्मन का संगीत है। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, लीजिए इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत का संगीत दिया है। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गाए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉ नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शाम 5 बजे मां क्षिप्रा की 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरूआत कल गंगा दशहरा

0: के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ यादव ने ही मां शिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेलिया ने उनका स्वागत किया। अब रुख करते हैं मौसम का। इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्तरीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं। खंडवा के मानधाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा।

0: ने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: Action.
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक

0: टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें।

0: सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ही फिल्मी नगमा, जिसे हमने लिया है मेरे हुजूर फिल्म से। आवाज है मोहम्मद रफी की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनना चाहा है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये पत्र आया ओम प्रकाश, किरण, आकाश, विकास, नंदिनी, शिवांश और समस्त नेमा परिवार का। तो आइए सुनते हैं इन सभी की पसंद का मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ है, शकील बदायनी की शब्द रचना संगीत नौशाद का। मेरे महबूब फिल्म के इस गाने को सुना चाहा है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता सिद्धांत प्रिंस एकांश, विश्वकर्मा नगर नागपुर से पत्राया शैलेश वैशाली श्वेता सुमित और ध्वनि गवाड़कर का। इसी गीत को सुना चाहा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत साथी फिल्म से है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत है। सुनना चाहा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का।

कनेरा मोहल्ला पटियाला से ये पत्र आया है बत्ता परिवार का। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता का। इसी गीत की फरमाइश भेजी पटेल नगर मलूट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया ने। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, राहुल देवबर्मन का संगीत, स्वर किशोर कुमार के और फिल्म है कुदरत।

ये गीत आरजू फिल्म से लिया है जिसे गाया मोहम्मद रफी ने। इसे सुना चाहा है सरो चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हदिया असमा सालिया शोएब खान पोतरा मुस्तावा खान राउफ भाई और शाहिद भाई ने। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत वक्त फिल्म से है, जिसे गाया आशा भोसले ने। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया रवि ने। सुना चाहा है ग्राम धोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड रुस्तम, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से पतराया दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है राज शर्मा।

0: आशा भोसले की आवाज में गाए वक्त फिल्म के इस गाने के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम छाया पाठक को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल के निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शाम 5 बजे मां क्षिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। और इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा। शाम 5:33 और 6:30 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे रात 8:15 पर और रात 10:00। छह बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं किसानों के लिए लाभकारी कस्टम हायरिंग। इस विषय पर डॉक्टर अनुराग पटेल से ली गई भेंटवार्ता। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशा में रात्रि 9:30 सुनिएगा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम महफिले समा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 आज हम आपको सुनाएंगे पंडित उमाकांत रमाकांत गुंदेजा का ध्रुपद गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:05 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ समय के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर पर सुन सकेंगे। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी है।

444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को ही अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वास तिवारी और आज हमारे साथ हैं
1: शिल्पी अग्रवाल।
0: तो स्वीकार करें हमारा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के परमाणु विज्ञान और अनुसंधान प्रमुख संस्था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC की, जिसने देश को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: साथियों, भारत सरकार ने 3 जनवरी 1954 में भाभा को संस्थापक निदेशक बनाकर परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना मुंबई के ट्रॉम्बे क्षेत्र में की थी।
0: यह भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र है।
1: वर्ष 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निधन के बाद 22 जनवरी 1967 को केंद्र का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। यह केंद्र भारत का प्रमुख बहुविषयक परमाणु अनुसंधान केंद्र है।
0: साथियों, BARC केवल परमाणु ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनुसंधान का दायरा बहुत व्यापक है। यहाँ कई प्रसिद्ध अनुसंधान रिएक्टर विकसित किए गए, जैसे अप्सरा, ध्रुव और सायरस।

0: साथ ही कृषि क्षेत्र में बेहतर बीज, खाद्य संरक्षण और विकिरण तकनीक के माध्यम से फसलों की उन्नत किस्में विकसित करना और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटॉप तैयार करना है।
1: इसके अलावा जल शुद्धिकरण और समुद्र जल को पीने योग्य बनाना जैसी तकनीकों पर यहाँ अनुसंधान किया जाता है।
0: साथियों लेजर प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपर कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकें विकसित की गईं,
1: जिससे भारत वैश्विक स्तर पर विज्ञान और तकनीक में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।
0: साथियों आपको बता दें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक श्री विवेक भसीन हैं। दोस्तों ये तो हमने आपको जानकारी दी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पर, और मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
1: साथियों अंतराल के बाद पुनः स्वागत है और ले चलते हैं आपको वार्ता की ओर, जिसमें वार्ताकार होंगे रूपेश साहू और वार्ता का विषय होगा धूम्रपान पर स्वास्थ्य का प्रभाव।
4: नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे धूम्रपान विषय के बारे में, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन प्रकृति का अनमोल उपहार है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना जीवन का आनंद अधूरा रहता है। स्वास्थ्य ही वह आधार है जिस पर व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में अनेक ऐसी बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं जो मानव स्वास्थ्य को धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। धूम्रपान ऐसी ही एक गंभीर और घातक आदत है। धूम्रपान का अर्थ है तंबाकू से बने पदार्थों जैसे बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का आदि का सेवन करना। आज दुनिया के करोड़ों लोग धूम्रपान करते हैं। कुछ लोग इसे फैशन समझते हैं, कुछ तनाव दूर करने का साधन मानते हैं और कुछ केवल साथियों के प्रभाव में आकर इसकी शुरुआत कर देते हैं। परंतु धीरे धीरे यह आदत लत में बदल जाती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होने लगता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी इसके दुष्प्रभाव का शिकार बनते हैं। तंबाकू के धुएं में हजारों हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जिनमें अनेक कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं। धूम्रपान के कारण हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, कैंसर, श्वसन समस्याएं तथा मानसिक तनाव जैसी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आज धूम्रपान विश्व स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु धूम्रपान से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। इसलिए धूम्रपान के दुष्प्रभावों को समझना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। धूम्रपान वह प्रक्रिया है जिसमें तंबाकू को जलाकर उसका धुआं मुंह या नाक के माध्यम से शरीर के अंदर लिया जाता है। तंबाकू में निकोटिन नामक नशीला पदार्थ पाया जाता है जो व्यक्ति को इसकी लत लगा देता है। धूम्रपान के प्रमुख रूप बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, चिलम, वेपिंग और ई सिगरेट, इन सभी माध्यमों से शरीर में हानिकारक रसायन प्रवेश करते हैं। धूम्रपान का इतिहास, अगर हम धूम्रपान के इतिहास की बात करें, तंबाकू का उपयोग प्राचीन समय से किया जाता रहा है। अमेरिका के आदिवासी लोग तंबाकू का प्रयोग धार्मिक और औषधीय उद्देश्यों के लिए करते थे। बाद में यूरोपीय देशों में इसका प्रसारण हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में धूम्रपान लोकप्रिय हो गया। भारत में तंबाकू का उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। पहले हुक्का और बीड़ी का चलन अधिक था, लेकिन आधुनिक समय में सिगरेट और ई सिगरेट का उपयोग तेजी से बढ़ा है। धूम्रपान में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व, तंबाकू के धुएं में लगभग 7000 से अधिक रसायन पाए जाते हैं, जिनमें से कई अत्यंत विषैले होते हैं। प्रमुख हानिकारक तत्व जैसे निकोटीन, यह नशीला पदार्थ है जो लत उत्पन्न करता है। दूसरा टार, यह फेफड़ों में जमकर कैंसर का कारण बनता है। तीसरा कार्बन मोनो ऑक्साइड, यह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है। चौथा अमोनिया, यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। पांचवा फॉर्मेल्डिहाइड, यह जहरीला रसायन कैंसरकारी होता है। आर्सेनिक, यह विषैला तत्व शरीर को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान के अगर कारण की बात करें तो पहला फैशन और दिखावा, कई युवा धूम्रपान को आधुनिकता और स्टाइल का प्रतीक मानते हैं। दूसरा दोस्तों का प्रभाव, साथियों के दबाव में आकर कई लोग धूम्रपान शुरू कर देते हैं। तीसरा तनाव, कुछ लोग तनाव कम करने के लिए भी धूम्रपान करते हैं। चौथा विज्ञापन और फिल्में, फिल्मों और सोशल मीडिया में धूम्रपान को आकर्षक रूप में दिखाया जाता है। पांचवा जिज्ञासा।

0: कई किशोर केवल अनुभव लेने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं। छठा, पारिवारिक वातावरण। यदि परिवार के सदस्य धूम्रपान करते हैं तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। धूम्रपान का शरीर पर प्रभाव क्या है? धूम्रपान शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। फेफड़ों पर प्रभाव। फेफड़े धूम्रपान से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। फेफड़ों का कैंसर। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ब्रोंकाइटिस, यह श्वसन नलियों में सूजन उत्पन्न करता है। तीसरा, अस्थमा। धूम्रपान अस्थमा के रोगियों की स्थिति खराब कर देता है। चौथा, सांस लेने में कठिनाई। फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। पांचवा, टीबी का खतरा। धूम्रपान करने वालों में क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। हृदय पर प्रभाव। धूम्रपान हृदय रोगों का प्रमुख कारण है। पहला, उच्च रक्तचाप। निकोटीन रक्तचाप बढ़ा देता है। दूसरा, हृदयाघात। धूम्रपान से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, रक्त वाहिकाओं में रुकावट। धमनियों में वसा जमा होने लगती है। स्ट्रोक। मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। मस्तिष्क पर प्रभाव। धूम्रपान मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। प्रभाव, याददाश्त कमजोर होना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, अवसाद, यह सभी धूम्रपान के मस्तिष्क पर प्रभाव हैं। निकोटीन। निकोटीन व्यक्ति को मानसिक रूप से निर्भर बना देता है। पाचन तंत्र पर प्रभाव। धूम्रपान पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। जैसे पहला, मुंह का कैंसर। तंबाकू मुंह और गले के कैंसर का प्रमुख कारण है। दूसरा, दांतों की समस्या। दांत पीले हो जाते हैं और मसूड़े खराब होने लगते हैं। तीसरा, पेट की बीमारियां। अल्सर और गैस की समस्या बढ़ती है। चौथा, भूख में कमी। धूम्रपान से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। त्वचा पर प्रभाव। धूम्रपान त्वचा की सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। समय से पहले झुर्रियां आ जाना, त्वचा में रूखापन होना, चेहरा मुरझा जाना, त्वचा का काला पड़ना इत्यादि। धूम्रपान व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा दिखाने लगता है। आंखों पर प्रभाव की बात करें, धूम्रपान आंखों के लिए भी हानिकारक है। आंखों में जलन, मोतियाबिंद, दृष्टि कमजोर होना इत्यादि इसके आंखों पर प्रभाव है। प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव। धूम्रपान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। इससे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ता है। गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव। धूम्रपान का गर्भवती महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि गर्भवती महिला धूम्रपान करती है तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पर भी पड़ता है। दुष्प्रभाव, बच्चे का कम वजन होना, समय से पहले जन्म होना, गर्भपात, शिशु मृत्यु का खतरा इत्यादि। किशोरों पर प्रभाव। आज युवाओं में धूम्रपान तेजी से बढ़ रहा है। पढ़ाई में ध्यान की कमी होना, खेल कूद में कमजोरी, मानसिक तनाव, नशे की अन्य आदतों की संभावना। निष्क्रिय धूम्रपान। पैसिव स्मोकिंग, जब कोई व्यक्ति दूसरों के धूम्रपान का धुआं सांस के साथ अंदर लेता है तो उसे निष्क्रिय धूम्रपान कहते हैं। प्रभावित लोग, अगर प्रभावित लोगों की बात करें तो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, परिवार के सदस्य, यह सभी प्रभावित लोगों की श्रेणी में आते हैं। निष्क्रिय धूम्रपान भी अत्यंत खतरनाक होता है। बच्चों पर प्रभाव। धूम्रपान करने वाले माता पिता के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समस्याएं जैसे कि सांस की बीमारी, एलर्जी, कमजोर प्रतिरक्षा, फेफड़ों की समस्या। धूम्रपान और कैंसर। धूम्रपान कई प्रकार के कैंसर का कारण बनता है। जैसे कि अगर प्रमुख कैंसर की बात करें तो पहला, फेफड़ों का कैंसर। दूसरा, मुंह का कैंसर। तीसरा, गले का कैंसर। चौथा, पेट का कैंसर। पांचवा, मूत्राशय का कैंसर। धूम्रपान का मानसिक प्रभाव। धूम्रपान व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। प्रभाव, चिंता हो, अवतनाव, अवसाद, चिड़चिड़ापन। निकोटीन की लत मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। धूम्रपान का सामाजिक प्रभाव। धूम्रपान केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। परिवार में तनाव, आर्थिक नुकसान, सामाजिक दूरी, बच्चों पर गलत प्रभाव। धूम्रपान का आर्थिक प्रभाव। धूम्रपान पर खर्च होने वाला पैसा परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। नुकसान, आय का अपव्यय, इलाज पर अधिक खर्च, कार्य क्षमता में कमी। गरीब परिवारों में यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर होती है। पर्यावरण पर प्रभाव। धूम्रपान पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वस्थ जीवन ही सच्चा सुख है। यदि हम धूम्रपान जैसी बुरी आदतों से दूर रहेंगे तभी एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। तंबाकू का हरकस जीवन की ओर बढ़ता एक धीमा विष है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता, धूम्रपान का स्वास्थ्य पर प्रभाव। वार्ताकार थे रूपेश साहू। साथियों, इसी क्रम में आपको ले चलते हैं एक और चर्चा की ओर।
2: दोस्तों, हमारे संविधान के समानता के अधिकार को हकीकत में बदलने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद पावरफुल संवैधानिक संस्था यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में।
1: बिल्कुल, विश्वास, एक मजबूत भारत के लिए पिछड़े वर्गों का विकास और उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है।

0: शिल्पी, सबसे पहले इसका इतिहास बताइए, क्या है शुरू से ही एक संवैधानिक संस्था थी?
1: नहीं विश्वास, शुरुआत में यह 1993 के एक एक्ट के तहत बनी सिर्फ एक वैधानिक संस्था थी, लेकिन साल 2018 में 102वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया।
0: यानी अब इसके पास सीधी संवैधानिक ताकत है। तो इस आयोग के मुख्य कार्य क्या है?
1: इस आयोग के मुख्य रूप से तीन बड़े काम है। पहला, अधिकारों की रक्षा, पिछड़े वर्गों के अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करना। दूसरा, नीति निर्माण, उनके कल्याण और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना। और तीसरा, समीक्षा करना, सरकारी योजनाओं की निगरानी करना और हर साल राष्ट्रपति जी को इसकी रिपोर्ट सौंपना है।
0: बेहतरीन। इसकी संरचना कैसी होती है और इसे चलाता कौन है?
1: इस आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल सामान्यतः 3 साल का होता है।
0: शिल्पी, अगर किसी के अधिकारों का हनन हो तो क्या यह आयोग सिर्फ सलाह देता है या इसके पास एक्शन लेने का भी कोई पावर होता है?
1: विश्वास, इसके पास बहुत बड़ी ताकत है। किसी भी शिकायत की जांच करते समय इस आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां मिली हुई हैं। यह किसी को भी समन भेजकर बुला सकता है, गवाही ले सकता है और सरकारी दस्तावेज मंगवा सकता है।
0: बाकी कमाल की बात है, यानी युवाओं और नागरिकों के पास अपने अधिकारों के लिए एक मजबूत कवच है। चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिल्पी?
1: बस यही कि एक जागरूक युवा ही मजबूत देश बनाता है। हमें इन संस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। साथियों, ये तो हमने आपको जानकारी दी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर, और कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आपका अपना स्वागत है अंतराल के बाद, और ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की अगली चर्चा की ओर। साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की गरिमा से जुड़ा है।
1: बिल्कुल विश्वास, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर। सीधे शब्दों में कहें तो यह वो संस्था है जो हमारी जीने, आजादी, समानता और सम्मान के अधिकारों की रक्षा करती है।
0: सही कहा। कई बार युवाओं को लगता है कि ये सिर्फ कानूनी बातें हैं, लेकिन असल में अगर किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव हो या पुलिस बिना वजह परेशान करे तो मानव अधिकार आयोग वहां ढाल बनकर खड़ा होता है।
1: बिल्कुल, और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में एक कानून के तहत की गई थी। इसके पास सिविल कोर्ट जैसी ताकतें होती हैं। यह खुद भी किसी मामले का संज्ञान ले सकता है, जिसे हम सुओ मोटो कहते हैं।
0: यानी अगर अखबार या टीवी में भी आयोग किसी अन्याय की खबर देखता है तो वह खुद एक्शन ले सकता है। पर शिल्पी, क्या इसके पास सजा देने की भी पावर होती है?
1: यही एक बड़ा भ्रम है विश्वास। आयोग सीधे सजा नहीं दे सकता और न ही मुआवजा बांटता है। इसका मुख्य काम है जांच करना, सरकार या कोर्ट की सिफारिशें भेजना और पीड़ित को न्याय दिलाना। इसकी सिफारिशों को सरकार बहुत गंभीरता से लेती है।
0: यानी यह एक मजबूत मार्गदर्शक और रक्षक की तरह काम करता है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले जाते जाते दोस्तों के लिए कोई संदेश देना चाहोगी इससे जुड़ा?
1: हाँ, संदेश यही है कि अपने अधिकारों को जानिए। अगर देश के किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे NHRC की वेबसाइट पर या नई दिल्ली स्थित इसके ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए किसी महंगे वकील की जरूरत नहीं होती।
0: बहुत सही बात कही शिल्पी। जागरूक रहिए क्योंकि जागरूक युवा ही हमारे मजबूत देश की नींव है।
1: साथियों, अभी हमने आपको जानकारी दी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर, और अब

0: आपको ले चलते हैं वार्ता की ओर। वार्ता है पेड़ों का प्राकृतिक महत्व। वार्ताकार हैं अतुल विश्वकर्मा।
1: नमस्कार दोस्तों, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव जीवन, प्रगति और पूरे पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। पेड़ केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाले साधन नहीं है, बल्कि वे पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यदि पेड़ ना हो तो जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। मनुष्य, पक्षी, पशु, जलवायु, वर्षा तथा पर्यावरण संबंधों से पेड़ों का बहुत महत्व है। इसका इसलिए इतना महत्व है क्योंकि पेड़ों से वर्षा होती है, पेड़ ही जीवन है। प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति में पेड़ों को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे देश में पीपल, बरगद, नीम, तुलसी तथा अन्य वृक्षों की पूजा की जाती रही है। इसका कारण केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि यह समझ भी थी कि पेड़ मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहकर तपस्या करते थे क्योंकि वहाँ का वातावरण शांत, शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक होता था। पेड़ हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज देते हैं, ऑक्सीजन। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य बिना भोजन में भोजन के कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना पानी के कुछ ही दिन रह सकता है, लेकिन बिना हवा के कुछ ही मिनट जीवित रह सकता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यही ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार है। इसलिए पेड़ों को धरती का हरा फेफड़ा भी कहा जाता है। आज प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। शहरों में धूल, धुआं और जहरीली गैसें वातावरण को दूषित कर रही हैं। ऐसे समय में पेड़ प्राकृतिक वायु शोधक का कार्य करते हैं, वातावरण की हानिकारक गैसों को कम करते हैं और हवा को शुद्ध बनाते हैं। यदि शहरों में अधिक पेड़ हों तो प्रदूषण काफी हद तक कम किया जा सकता है। पेड़ केवल हवा को शुद्ध नहीं करते बल्कि तापमान को भी नियंत्रण रखते हैं। जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा और सुखद रहता है। आज पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण जंगलों की कटाई और पेड़ कम होना भी है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है और पृथ्वी गर्म होने लगती है। इसलिए जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। पेड़ वर्षा लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों में वातावरण में नमी बनाए रहते हैं जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यदि जंगल लगातार कटते रहे तो वर्षा का संतुलन बिगड़ जाएगा। कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। आज हम जलवायु परिवर्तन में इन समस्याओं को महसूस भी कर सकते हैं। इन मूल समस्याओं में पेड़ का कटना पेड़ भूमि संरक्षण में भी सहायक करता है। उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूत से पकड़कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यदि पेड़ ना हो तो बारिश के समय भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। पेड़ धरती को बांधकर रखते हैं और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ हमें फल, फूल, लकड़ी, औषधियाँ और उनके उपयोगी अनेक वस्तुएं प्रदान करते हैं। आम, नीम, आंवला, अशोक, चंदन जैसे कई पेड़ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आयुर्वेद में अनेक औषधियाँ पेड़ों और पौधों से बनाई जाती हैं। नीम को प्राकृतिक औषधि माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी, आंवला, गिलोय जैसे पौधे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। पशु पक्षियों का जीवन भी पेड़ों पर निर्भर करता है। पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। अनेक जीव जंगलों में निवास करते हैं। यदि जंगल नष्ट होंगे तो जीव जंतुओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। कई पशु पक्षी विलुप्त तो होने की कगार पर हैं क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास समाप्त तो होते जा रहे हैं। पेड़ मानव को मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। जब हम किसी बगीचे, जंगल या हरियाली वाले स्थान पर जाते हैं तो मन को शांति और ताजगी महसूस होती है। यदि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन देना है तो हमें अभी से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। एक पेड़ लगाने का अर्थ केवल एक पौधा रोपना नहीं है बल्कि भविष्य की रक्षा करना होता है। एक बड़ा वृक्ष हजारों लोगों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन देता है, वर्षा लाने में सहायक होता है और धरती को हरा भरा बनाए रखता है। इसलिए जब भी अवसर मिले हम वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। हम सभी ने यही कहावत सुनी है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। इसका अर्थ यही है कि एक पेड़ का महत्व अत्यंत विशाल है। पेड़ हमें केवल वर्तमान लाभ नहीं देते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जीवन सुरक्षित

0: रखते हैं। पेड़ों के महत्व पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। पेड़ हमें जीवन देते हैं, शुद्ध हवा और जल देते हैं, धरती को हरियाली देकर जीवन में खुशहाली देते हैं, धूप में छाया बन जाते हैं, बरसात में भी साथ निभाते हैं, पत्थर खाने पर भी देखो मीठे फल ही हमें खिलाते हैं। मत काटो इन वृक्षों को तुम, धरती की शान है ये, पेड़ों से ही जीवन अपना, पेड़ों से ही अपनी जान है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि हरियाली तनाव को कम कर सकती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई लगातार बढ़ रही है। बड़े बड़े भवन, सड़कें, उद्योग बनाने के लिए जंगलों को, हरे बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। इसका परिणाम पर्यावरण असंतुलन, प्रदूषण और जल संकट के रूप में सामने आ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो भविष्य में मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल करना उतना ही नहीं। अक्सर पौधे तो लगा देते हैं लेकिन बाद में उनकी देखभाल नहीं करते। हमें यह भी समझना होगा कि एक पेड़ को बड़ा होने में कई वर्ष लगते हैं। सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं वृक्षारोपण अभियान चलाती हैं। स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जब तक समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा। हमें अपने बच्चों को भी पेड़ों का महत्व समझाना चाहिए। यदि बचपन से ही उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी भावना विकसित होगी तो भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नागरिक बनेंगे। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखें। हमें ऐसे विकास की आवश्यकता है जो प्रगति को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़े। यदि हम केवल आधुनिक सुविधाओं के पीछे भागते रहे और पेड़ों को नष्ट कर दे रहे तो आने वाली पीढ़ियां के लिए स्वच्छ हवा और पानी दुर्लभ हो जाएगा। पेड़ हमें निस्वार्थ भाव से सब कुछ देते हैं, वे कभी बदले में कुछ नहीं मांगते। भूखे को फल देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और जीवन को सुरक्षित बनाते हैं। इसलिए पेड़ों को धरती का सच्चा मित्र कहा जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पेड़ केवल प्रगति का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार। यदि हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो पेड़ों की रक्षा करनी होगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे और धरती को हरा भरा बनाए रखने में अपना प्रयास करेंगे।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता पेड़ों का प्राकृतिक महत्व। वार्ताकार थे अतुल विश्वकर्मा।
2: साथियों, अब ले चलते हैं आपको एक प्यारे से गीत की ओर और करवा देते हैं मनोरंजन आपका।

0: साथियों, अभी आपने सुना द ट्रेन से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी किके की और गीतकार थे सईद कादरी और संगीत दिया था मिथुन ने।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
3: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
0: साथियों, अब आपको देते हैं आज की रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर संयुक्त रक्षा सेवा यानी CDS 2026 की भर्ती हेतु अधिसूचना परीक्षा हेतु जारी किया है।

0: पद का नाम है IAM वायु सेना अकादमी नौसेना अकादमी। पदों की संख्या है 451।
1: आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी।
0: आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 20 मई 2026 और अंतिम तिथि है 9 जून 2026।
1: शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अनिवार्य है। पोस्ट के हिसाब से योग्यता अलग अलग रखी गई है। पद संबंधी अधिक जानकारी करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर www.upsc.gov.in पर विजिट करें। साथियों, इसी क्रम में अब आपको सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: साथ ही हूं। अभी आपने सुना फिल्म जन्नत से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी केके की और गीतकार थे सईद कादरी, जिसमें संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: साथियों, इसी क्रम में अब समय हो चला है कल के कार्यक्रम का। कल आप सुनेंगे कॉफी हाउस प्रोग्राम, आलेख होगा शाहजहां का और साथी होगी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं और होगी रोजगार सूचना।
0: साथियों, तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने दोस्त विश्वास तिवारी को
1: और शिल्पी अग्रवाल को।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं जंगली फिल्म का गीत। आवाज नवराज हंस, हमशिखा अय्यर, अभिषेक नयनलवाल और गुलशन कुमार की है। शब्द रचना कुमार सूर्यवंशी की, संगीत निर्देशन समीर उदयन का है।

आप सुन रहे थे जंगली फिल्म में नवराज हंस, हमशिखा अय्यर, अभिषेक और गुलशन कुमार को। अय्यर आपको सुनवाते हैं कारवां फिल्म का गीत, आवाज पापोन की है, शब्द रचना आकाश खुराना की और संगीत निर्देशन अनुराग साइकिया का है।

अभी आप सुन रहे थे कार्मा फिल्म में पापोन की आवाज में ये गीत। शब्द रचना आकर्ष की थी और संगीत निर्देशन था अनुराग का। आइए अब आपको सुनवाते हैं भारत फिल्म का गीत, आवाज अभिजीत श्रीवास्तव की, शब्द रचना इरशाद कामिल की है, संगीत निर्देशन है विशाल शेखर का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले आपको बता दें इस सभा के शेष कार्यक्रम। शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का भाग 1292 और रात 8 बजे सुर्खियों में। शाम 6:30 पर हम आपको सुनाएंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम, लोकधारा, कलाकार होंगे जगदीश यादव। 7:20 पर घरनी कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाएं सुनेंगी श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। साथ ही होगी वार्ता मृदा परीक्षण आवश्यकता उपयोगिता एवं विधि। वार्ताकार होंगी अदिति चौरसिया। इसके अलावा आज की सीख का विषय होगा जैसो खे हो अन्न उसे हो वे मन। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 8:15 पर। 8:25 पर हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी @90 के अंतर्गत विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय मेकिंग रील प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता एवं कंटेंट क्रिएटर धर्मेंद्र लोधी से बातचीत। दिल्ली से आज हम प्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन। रात्रि 10 बजे हम आपको सुनाएंगे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। ये तो थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:20 पर हिन्दी महक के अंतर्गत आप सुनेंगे हिन्दी काव्य पाठ कमल किशोर कमल से। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा सुबह 7:30, सुबह 8:45, शाम 5:40 और रात 8:15 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे धारावाहिक गीत गीता का भाग 8, शीर्षक होगा अक्षर ब्रह्म योग। सुबह 9 बजे लोकरंग कार्यक्रम के कलाकार होंगे लाल सिंह यादव। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत के अंतर्गत एक ही फिल्म से मैं बागवान फिल्म के चंद फिल्मी गीत। 10:05 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थतम स्वस्थ जीवन का भाग 7। श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे 10:30 पर। दिन में 11 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल हम अनुप्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12 बजे आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से। दिन में 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2 बजे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही कल हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का भाग 1293 और रात 8 बजे सुर्खियों में। दिन में 1 बजे महिलाएं सुनेंगी महिला सभा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता बिगड़ता पर्यावरण जिम्मेदार कौन। वार्ताकार होंगी अंजलि तिवारी। साथ ही होगी उपयोगी जानकारी। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे कॉफी हाउस आलेख शाह जहां का। प्रतिभागी कलाकार होंगे अभिषेक मिश्रा प्रदीप की भूमिका में, अनुपम खरे राहुल की भूमिका में, नेहा की भूमिका में निभाएंगी महिमादीप पटेल और निशा की भूमिका में होंगी राधिका वाजपेयी। इसके अलावा होगी रोजगार सूचना। शाम 6:30 पर लोकधारा कार्यक्रम की कलाकार होंगी राजकुमारी विश्वकर्मा। 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन का भाग 7। इसके अलावा वार्ता विद्यार्थियों के लिए एक नई राह तनाव से सफलता तक। वार्ताकार होंगे श्रेयांश दुबे। आज की सीख का विषय होगा जैसो देश उसे भेस। 8:30 पर होगी भेंटवार्ता विषय होगा एंटी करप्शन से बचाव और आम नागरिकों के अधिकार विषय पर कुटुंब न्यायाधीश श्रीराम जी गुप्ता जिला जज से बातचीत। दिल्ली से कल हम प्रसारित करेंगे रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है और रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम आकाशवाणी 5:58 होने को है न्यूज हेडलाइंस हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करते हैं।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में हमारी बहनों को 40 से ज्यादा ई साइकिलें वितरित की गई हैं। ये साइकिल इन बहनों के जीवन में बहुत मदद करेंगी, खासकर ई साइकिल जब आज पेट्रोल और डीजल की कठिनाई का दौर है तब ई साइकिल का अपना ही महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है और उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की पहलों का जिक्र किया है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाली जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1,87,000 करोड़ रूपये की बिक्री दर्ज की है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये उपलब्धि लाखों ग्रामीण कारीगरों की कड़ी मेहनत के कारण संभव हुई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। यह योगा की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए
2: अजीत जी?

0: आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने इन फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी,
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. A lion.
2: Yes.
3: Monkey. birds of different kind.
2: Very nice.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
5: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
6: बिल्कुल
5: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
7: वीर जोरावर की
8: जय।
7: वीर जोरावर की
8: जय।
7: जय जेरापुर जय भारत।
8: जय जेरापुर जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी

0: छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह दरबार खास में।
6: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
6: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
6: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
6: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
6: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
6: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
7: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
8: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है।

0: दूसरे उसके अंगरक्षक साये की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
1: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
1: जो हुकुम सरकार।

0: John Abbott! Hutong? Honor. Tum charo taraf se gir chuke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग, मैं खुश हुआ, तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियो, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
6: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
6: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
6: yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
6: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा।
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
6: एक्चुअली यू आर अ फूल।
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल

0: टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
6: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इस कार्यक्रम के कलाकार हैं जगदीश यादव। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं जगदीश यादव के स्वर में ये गणेश वंदना।

0: अभी आप सुन रहे थे जगदीश यादव के सुर में ये गणेश वंदना। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं विवाह गारी, लेकिन इससे पहले लेते एक छोटा सा अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

अभी आप सुन रहे थे विवाह गारी, कलाकार थे जगदीश यादव। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं ये लोक शैली बद्ध बुंदेली लोकगीत, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: अभी आप सुन रहे थे ये लोक शैलीबद्ध बुंदेली लोकगीत, कलाकार थे जगदीश यादव। आइए इन्हीं से सुनवाते हैं आपको नशा मुक्ति पर आधारित एक और बुंदेली लोकगीत, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

0: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्ति पर आधारित ये बुंदेली लोकगीत जगदीश यादव से। आइए इन्हीं से आपको सुनवाते हैं लेद, लेकिन लेते हैं पहले छोटा सा अंतराल।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: AIR at 90. कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं जगदीश यादव के स्वर में ये गारी, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी संदेश।
1: स्मृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन, कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

Marco Tata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, रामायण

ateşi yer dika, poker dika. Miss World dika, World Cup dika. Chandrayaan dika, Insat dika. Nayi kahaniyon ne naya Bharat likha. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल

वही है, कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है।

जयदीश यादव के गाये गाड़ी के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर या आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम विनोरापुर थाना कोटरा जनपद जालौन उत्तर प्रदेश से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री शिवानी जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है, ये ग्राम विनोरापुर थाना कोटरा तहसील उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। गुमशुदा युवती का चेहरा लंबा, रंग सांवला, आंख नाक कान औसत, कद लगभग 4 फुट 4 इंच, ये सलवार सूट व काला दुपट्टा पहने हुए हैं। ये दिनांक 12 अप्रैल 2026 को घर से रात्रि के 11 बजे कहीं चली गई हैं। जिस किसी भी सज्जन को इनके बारे में कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया इन नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। संपर्क सूत्र है क्षेत्राधिकारी नगर उरई जनपद जालौन उत्तर प्रदेश 9454401427। प्रभारी निरीक्षक थाना कोटरा जनपद जालौन का संपर्क सूत्र है 9454403598 और ओम प्रकाश थाना कोटरा जनपद जालौन का संपर्क सूत्र है 9935134231। लीजिए अब सुनिए एक और गुमशुदा संबंधी सूचना। गुमशुदा युवती का नाम मांडवी, उम्र करीब 23 वर्ष, पिता का नाम चरण सिंह, युवती का रंग गेहुआ, इकहरा जिस्म, ऊंचाई करीब 4 फुट 8 इंच, ये पीले रंग की छीटदार कुर्ती और क्रीम कलर का लोअर पहने हुए हैं, साथ ही हरे रंग का दुपट्टा भी है। ये ग्राम गुपलापुर जालौन थाना सिरसा कलार जनपद जालौन उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और 17 अप्रैल 2026 को ये घर से लापता हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया इन नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। पारिवारिक जनसंपर्क है 8874 6

आठ आठ सात छ आठ दूसरा नंबर है, 8400122953। जांच अधिकारी का नंबर है 9305490479। थाना अध्यक्ष सिरसा कलार का संपर्क सूत्र है 9956054579। और क्षेत्राधिकारी जालौन का संपर्क सूत्र है 9454401428। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
3: जल संरक्षण को लेकर हमारे सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2,00,000 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
2: यह परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र

0: वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। ये परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 23 वर्ष पहले मां शिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और SP निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रूपये दिए जाएंगे। सांसद VD शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में BSF की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने BSF, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर 4 स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
2: BSF के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था BSF ने, वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी BSF ने बहुत बड़ा योगदान किया।
0: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और QR कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री तुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में CBI ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में FIR दर्ज की है। कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से 2.5 घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया। जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जांच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में NGT के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण, लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जांच होगी। 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए MP लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि AI की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज, हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं।

12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर ईसीसीई दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जांच की गई और धार में 1 जून को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। तुषार शर्मा मौत मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रस्तुत है घर में कार्यक्रम।

गर्ने कार्यक्रम सुने वाली सबै बहनन खो नंदनी बहन की राम राम पहुंच जावे। ओ देखो भैया बहन हरो गर्मी तो खूब ही ज्यादा हो रही है ना। ई गर्मी से और ई गर्मी के दिनन में अपन खो लू और लपट से बच के रहने हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में पीने हैं, घर से बाहर जब अपन जा रहे हुए तो देखो तौलिया से सिर को ढक के रखें, फुल बाजू के कपड़ा पहनवे, पानी खूब पीवे, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, आम को पनो, सक्सा की सूखी भाजी, चनन की, प्याज, अपन को देखो ये सब चीजें भोजन में शामिल करने हैं, इसे लपट से बचाव हो सकत है। और अपनी बहनन को एक बात को ध्यान और रखने हैं कि रसोई घर में जब अपनी बहनें खाना बनाती हैं तो उस समय देखो अपनी बहनें सावधानी रखवे, अपनी बहनें गैस चूल्हा पे खाना रोटी बनाती हैं उमे देखो लापरवाही न करवे। कई बार का होत है कि देखो चूल्हा से गैस बंद तो कर देती और देखो सिलेंडर को रेगुलेटर बंद करवो भूल जाती हैं, तो देखो अपन को लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, तो अपन को दो ही जगह से बंद करने हैं। रसोई घर में देखो आग लगावे की दुर्घटना अक्सर गैस रिसाव के कारण भी होती हैं, अपन गैस चूल्हा की जांच भी करत रहे, गैस पाइप रेगुलेटर और सिलेंडर में रिसाव ना हो रहा हो इको भी ध्यान रखें। ये सब अगर अपन छोटी छोटी बातें ध्यान रखें तो अपन रसोई घर में आग लगने से बचा सकते हैं। और बतकाओ तो करते ही रहे, मिल रहे हैं इब्राहिम के बाद।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: भैया बहनों देखो, विज्ञापन के बाद फिर कहूंगा घरनी कार्यक्रम में अपन को स्वागत है। और भैया बहना हो देखो, अपने घर में माता पिता हैं तो देखो उनकी सेवा करवो अपनो परम धर्म और कर्तव्य है ना। कैसे देखो, उनने अपन को जन्म दो है और पाल पोस के इतनो बड़ो करो है, अपनो भी फर्ज बनत है कि उनको कोनो प्रकार को कष्ट ना होवे। उनकी अपन को देखो तन मन से उनकी सेवा करने है। जो नैया के जब अपने मताई बाप काम करत है तो उनको ध्यान रखे, और बूढ़े हो गए तो देखो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे और उनको हे दृष्टि से देखे। तो देखो अपन को ऐसा बिल्कुल नहीं करने। कछु भैया बहन अपने माता पिता को तसैया देते हैं, उनकी देखभाल नहीं कराता है, अपन को ऐसा नहीं करने है। जितनी हो सके उतनी अपने भैया बहनों को उनकी सेवा करने है। माता पिता देखो देवता के समान होते हैं, अपने माता पिता का देवता के समान सम्मान दो चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता को सम्मान और सेवा करत है वे जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्त करत है। और भैया बहनों भटकाव कर है, इसे पहले लेते हैं जो छोटा सा विराम।
0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
2: भैया बहन हाँ देखो, अपन सभी जनक खेती किसानी करते हैं और खेती बाड़ी से जुड़े हैं, और खेती बाड़ी सभी भैया बहनन की जिम्मेदारी है। खेतन की मेड़न पे मेड़बंदी सभी भैया बहन करते हैं और सभी को करने हैं। खेतों के चारों ओर देखो मेड़ बना के वर्षा के पानी और मिट्टी बहवे से रोकत है। सो सभी जनन को अपनी खेतन में मेड़बंदी करने है और मेड़े बनाने हैं। इससे वर्षा को पानी खेतन में रुकत है और माटी को कटाव भी रुकत है और फसल उत्पादन भी बढ़त है। मेड़बंदी से कई लाभ भी होते हैं ना। वर्षा जल संरक्षण होते है, माटी को कटाव कम होते है, भूमि की नमी बनी रहत और भू स्थल को सुधार होते है, उत्पादन में वृद्धि होते है। अपन को मेड़ की नियमित मरम्मत करत रहो चाहिए। पानी निकासी के लाने देखो उचित स्थान रखना है। इसे सभी किसान भैया बहन को अपने खेतन की मेड़ बंदी जरूर करने है, जिसे खेत को पानी खेत ही में रहे और अपने किसान भैया बहनों को खेत में अधिक से अधिक लाभ हो भे। और अपने भैया बहनों को माटी को परीक्षण जरूर कराना है। आप अपने भैया बहनों को सुनवा रहे हैं वार्ता, विषय है मृदा परीक्षण आवश्यकता उपयोगिता एवं विधि। वार्ताकार है अदिति चौरसिया। तो लो अपने भैया बहन सुने।
3: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आज हम हमारे कृषि विज्ञान के क्षेत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मृदा परीक्षण, उसकी आवश्यकता उपयोगिता एवं विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए हम जानते हैं कि यह मृदा परीक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है और इसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में जानना हमें अत्यंत आवश्यक है। बताना चाहूंगी कि हमारी माटी भले ही हमें देखने में जीवित प्रतीत ना हो, परंतु वैज्ञानिक तौर पर मृदा एक जीवित तंत्र है। इसलिए जिस प्रकार हम हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, समय समय पर हमारे स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, उसी प्रकार हमारी फसल को जीवन देने वाली हमारी मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आज रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से खराब हो रहे मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना हम सभी मृदा वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। लगातार रासायनिक उपयोग से मृदा उर्वरता में कमी आ रही है, जिसे बनाए रखने के लिए संतुलित रूप में पोषक तत्वों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु मृदा परीक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा खेत की मिट्टी के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों की जांच की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश इत्यादि और पीएच मान का पता लगाकर फसल के अनुसार सही मात्रा में उर्वरक तय करना है। इसे हम ठीक उसी प्रकार समझ सकते हैं जिस प्रकार यदि हमारे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर हमारे खून की जाँच करते हैं, समस्या का पता लगाते हैं और हमें उचित उपचार देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी मृदा

के स्वास्थ्य की जांच कराना अनिवार्य है और जांच में जो भी परिणाम हमें प्राप्त हों उसके उचित उपचार हमें देना आवश्यक है। अब ये मृदा परीक्षण से हमें लाभ क्या है? तो मृदा परीक्षण के हमारे अनेक लाभ हैं, जिसके माध्यम से हमें मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी का पता चलता है, जिससे उर्वरकों की सही मात्रा का पता लगाया जा सकता है, जो कि हमारे किसान भाइयों को अनावश्यक खर्च जैसे यूरिया या डीएपी आदि के अनावश्यक उपयोग से बचाता है। साथ ही पोषक तत्वों की स्थिति के अलावा हमारे खेत में कोई अन्य समस्याग्रस्त मृदा हो, जैसे कि क्षारीय मृदा हो, अम्लीय मृदा हो, इस बात का पता लगाया जा सकता है। इस जानकारी के द्वारा उचित उपचार जैसे जिप्सम इत्यादि का प्रयोग कर भूमि सुधार किया जा सकता है। इसके साथ ही मृदा परीक्षण से प्राप्त जानकारी के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार फसल चुनने से उपज की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं। अब मृदा परीक्षण करवाने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह है मृदा का नमूना। क्या यह मृदा परीक्षण किसी भी समय कराया जा सकता है? तो मृदा परीक्षण कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि मृदा परीक्षण किस समय कराया जाए। हमेशा फसल की बुवाई के एक महीने पहले हमें खेत से मृदा का नमूना लेना चाहिए और इसकी जांच करवानी चाहिए। इसके लिए सर्वोत्तम समय रबी की फसल की कटाई के बाद एवं खरीफ की फसल की बुवाई के पहले, अर्थात यह जो ग्रीष्मकालीन समय है, मई एवं जून का महीना, यह श्रेष्ठतम माना गया है। मृदा परीक्षण कराने के लिए मृदा का प्रतिनिधि हमारे खेत से एक प्रतिनिधि नमूना मृदा का प्राप्त करना आवश्यक है। मृदा परीक्षण के लिए यह नमूना प्राप्त करने के लिए हमें मुख्य बातें कुछ आवश्यक हैं जो ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें आवश्यक सामग्रियां एकत्र करनी है, जैसे कि खुरपी, फावड़ा, तसला या तगाड़ी, कपड़े की थैली, लेबल, पेंसिल आदि सामान। आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के पश्चात हमें पूरे खेत का एक प्रतिनिधि नमूना लेने के लिए लगभग एक हेक्टेयर खेत से 10 से 15 स्थानों का जिगजैग आकार या W के आकार में चयन करना है। यह 10 से 15 स्थानों को चुन लेने के बाद प्रत्येक चुनी हुई जगह पर हमें ऊपरी सतह की घास, सूखी पत्तियां एवं कंकड़ इत्यादि हटाना है। खुरपी या फावड़े की मदद से 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग 6 इंच गहरा वी आकार का गड्ढा करना है। किसान भाइयों, यह जो सबसे ऊपरी सतही मृदा है 15 से 20 सेंटीमीटर की, यह फसल उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वी आकार का गड्ढा बना लें। अब इस गड्ढे की साइड वाली मिट्टी को खुरपी से ऊपर से नीचे तक एक समान परत, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत खुरच लें। ध्यान रहे, वी आकार के गड्ढे की जो साइड वाली सतह है ना, खुरपी उसके समानांतर ही अंदर से बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कराएं। इसी प्रकार सभी स्थानों से मिट्टी एकत्रित कर लें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। इस प्रकार पूरे खेत में चयनित स्थानों से एक मिश्रित नमूना तैयार कर लें। अब चूंकि यह मात्रा अवश्य ही ज्यादा होगी, इससे अंतिम प्रतिनिधि नमूना प्राप्त करने के लिए मिश्रित नमूने को एक साफ बोरी पर गोलाकार फैला दें। फिर चतुर्फल विधि, जिसे हम क्वार्टरिंग मेथड भी कहते हैं, उसके द्वारा ठीक उसे उसी प्रकार चार भागों में बांटें जैसे हम एक गोले के चार बराबर भाग करते हैं। आमने सामने के दो भागों को हटा दें, बाकी बचे नमूने को पुनः मिश्रण तैयार करें एवं वही प्रक्रिया दोहराएं। किसान भाइयों, यह प्रक्रिया आप तब तक दोहराएं जब तक लगभग 500 ग्राम मिट्टी ना रह जाए। अब इस अंतिम नमूने को एक साफ थैली में भरकर उस पर लेबल लगा दें। लेबल में क्या लिखना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लेबल में किसान भाई मुख्य रूप से नमूना संख्या लिखें, किसान भाई का नाम लिखें, खसरा नंबर लिखें एवं खेत की सामान्य पहचान, जैसे कि सड़क किनारे वाला खेत, तालाब के पास वाला खेत, कुएं वाला खेत इत्यादि, जो भी हमारी सामान्य पहचान हमारे खेत की होती है वह अवश्य रूप से लिखें। साथ ही पिछली फसल एवं अगली फसल की जानकारी भी अवश्य रूप से लिखें। नमूना एकत्र करने की तिथि लिखें, नमूना एकत्र करने वाले का नाम भी अवश्य रूप से लिखें। अब नमूना लेते समय हमें कुछ विशेष सावधानियां ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले तो हमें सही समय का चयन करना है। अगर खेत में हाल ही में खाद या उर्वरक डाला गया है तो कम से कम 2 महीने बाद नमूना लें।
स्थान का चुनाव करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे सड़क किनारे, मेड़ के पास या आपके खेत में कोई पेड़ होगा उस पेड़ के नीचे, खाद के गड्ढों के पास या ज्यादा ढलान वाली जगह जहां अधिकतर पानी जमा हो जाता हो, इन जगहों का चुनाव ना करें। यदि सूक्ष्म तत्वों की जांच आपको करवानी है, विशेषकर लौह तत्व यानी आयरन

0: उपकरण की जांच अगर आपको करवानी है तो जंग लगे हुए खुरपी, फावड़े या तसले का इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह स्टील की खुरपी का इस्तेमाल करें, अथवा लोहे की ही खुरपी हो तो कृपया साफ खुरपी का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक के तसले का उपयोग करें। जब हमारी जो 10 से 15 स्थानों का चयन किया गया, हमने वहां से मृदा इकट्ठी की, उसका एक मिश्रण जो हमने तैयार किया, उस मिश्रण को तैयार करते वक्त उसमें से कंकड़, पत्थर और जो भी पौधे के अवशेष या फसल के अवशेष उसमें हो उसे निकालकर अलग कर दें। इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान आप अवश्य रूप से रखें। अब एक प्रतिनिधि नमूना आपने एकत्र कर लिया, आपके लगभग एक हेक्टेयर खेत से आपने 10 से 15 स्थानों का चयन किया, उन सभी नमूने को एकत्रित करके आपने क्वार्टरिंग मेथड से जो नमूना है उसकी मात्रा को कम करके लगभग जो आपके पास 500 ग्राम मिट्टी बची आपने वह एकत्रित कर ली, उसमें अच्छे से लेबल कर लिया। अब आपको यह नमूना एकत्र करने के बाद मुख्य चीज है वह है उसे समय पर प्रयोगशाला पहुँचाना। इसके लिए प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं जहां यह सुविधा उपलब्ध होती है, वहां पर आप जाकर अपना नमूना जमा कर सकते हैं एवं मृदा परीक्षण करवा सकते हैं। इसके अलावा कृषि महाविद्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध होती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मृदा परीक्षण हेतु मंडियों में प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं, जहां से भी हमारे किसान भाई अपने मृदा के नमूने को जमा कर मृदा स्वास्थ्य पत्रक प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूंगी कि मृदा परीक्षण अत्यंत उपयोगी एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का आधार है। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रत्येक किसान भाई अपने खेत की मृदा का परीक्षण अवश्य करवाएं और उसके अनुरूप जो भी उपचार की आवश्यकता हो वह उपचार अपने खेत में उपयोग करें। धन्यवाद।
1: अब अपने भैया बहन सुन रहे तेजा वार्ता मृदा परीक्षण आवश्यकता उपयोगिता एवं विधि। वार्ताकार हती अतिथि चौरसिया जू। कार्यक्रम में सुनवा है आगे लोकमन जी। कार्यक्रम मिल रहे हैं इब्राहिम के बाद।

0: Akashvani at 90.
1: भैया बहन है देखो, ब्राह्म के बाद फिर से स्वागत है अपनों घनी कार्यक्रम में। और भैया बहन है देखो, अब शुरू करते हैं आज को लोकमंजरी कार्यक्रम, जो कार्यक्रम श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित बुंदेली लोकगीतन को फरमाइशी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की। लोकमंजरी कार्यक्रम में रामाधीन आर्य को गाँव भाव किसान गीत सुनबे के लाने हमें चिट्ठिया पाती लिख पहुंचाई है इन सभी भैया बहनों ने। ग्राम बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, ग्राम गोना कुसमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल और चाइना नामदेव, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। जज चिट्ठिया लिख पहुंचाई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। जय चिट्ठिया ईमेल पर हमें लिख पहुंचाई है जवाहर नगर दुर्ग से आर सी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े ने। तो इन सभी भैया बहनों की पसंद पे अपने भैया बहन सुनत है रामाधीन आर्य को गाँव भाव जो किसान महिमा गीत।

आवे अपने भैया बनन ने कैसो नो नो जो किसान लोग गीत सुनो जीखो गा रहे थे भैया रामाधीन आर्यजू। और भैया बहन हो लोक मंजरी कार्यक्रम में कहरबा गर्मी पे आधारित सुनबे केला ने फरमाइश करी है इन सभी भैया बहनन ने जा चिठिया ईमेल पे हमें लिख पहुंचाई है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता निखिल और अंकित कांगड़ा शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार अमारत दिलीप वर्मा संजय सोनी अरुण और पवन और इनके सभी घर वाले जा चिठिया लिख पहुंचाई है ममना सरीला जिला हमीरपुर से रामशरण विश्वकर्मा साहिल एवं उनके सभी विश्वकर्मा परिवार ने आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश सौरभ सायना और इनके सभी परिवार वाले ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर जसबीर जस्सी सीता और गीता ने। तो इन सभी भैया बहनन की पसंद पे हम सुनवा रहे हैं जो कहरवा गर्मी पे आधारित है जीखों गा रहे हैं भैया रामचरण यादव उनके संगी साथी। तो लियो सुनो।

अबे अपनी बहने सुन रही थी के सुनो नो जो कहरबा जी खुंगा रहे थे भैया रामचरण यादव उनके संगी साथी। लोकमंजरी कार्यक्रम में गारी रज्जू राजा चौहान की गाई भाई सुनवे के लाने फरमाइश करी है इन सबई भैया मेरे ने जा हमें ईमेल पे चिट्ठिया भेजी है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीतू लक्ष्य लाड़ो कोयल मल्होत्रा ने जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है ग्राम बा पोस्ट सौरई जिला ललितपुर से संतोष नामदेव अभय अनिल ज्योति संजना भारती उनके सभी परिवार वाले जा चिट्ठिया लिखी है ग्राम मामना जिला महोबा उत्तर प्रदेश से सोहन सिंह राजपूत नवीन प्रताप सिंह राजपूत और इनके सभी परिवार वाले जा चिट्ठिया लिखी है सिंघाड़ी नदी छतरपुर से राकेश दास कबीरपंथी कपूर सिंह घोष दीपक विश्वकर्मा जानकी विश्वकर्मा और जा चिट्ठिया लिखी है मृतला जिला महोबा से नय सिंह राजपूत बड्डे भैया विनीता सिंह राजपूत गौरव महाराज और उनके सभी भैया बहन और इनके सभी परिवार वाले। तो इन सभी भैया बहन की पसंद पे हम सुनवा रहे हैं जा गारी जीखों गा रही है बहन रज्जू राजा चौहान। तो लियो सुनो।

अब अपन ने भैया बहन की पसंद पे कैसी नौनी जा गारी सुनी जी खोंगारी थी बहन रज्जू राजा चौहान। लोकमंजरी कार्यक्रम में सोहर शकुंतला शुक्ला को गाँव भाव सुनबे के लाने हमें चिट्ठिया पहुंचाई है इन सभी भैया बहन ने। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया आधार सार्थक अलौकिक चंसौलिया। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू और पप्पी भाटिया ने। जा चिट्ठिया लिख पहुंचाई है ग्राम लोहेड़ी जिला महुबा से जयपाल यादव इंद्रपाल राघवेंद्र अरविंद दिव्यांशी आराधना और रोनिका यादव ने। तो इन सभी भैया बहन की पसंद पे अपन सुनत है जो सोहर जी खो गा रही है बहन शकुंतला शुक्ला। तो लियो सुनो।

अबे अपन ने कैसो नोनो जो सुहर सुनो जी खुंगा रही थी शकुंतला शुक्ला और जो तो हतो देखो लोक मंजरी कार्यक्रम ई कार्यक्रम की प्रस्तुति हती रविंद्र कुमार प्रजापति जी की। और भैया बहन हो देखो अब बात कर रहे हैं अपन आज की सीख की। तो आज की सीख को विषय है देखो जैसो खेहो अन उसे ही होवे मन। जा एक बुंदेली और लोक कहावत है ई को अर्थ जो ही है कि जैसो अपन भोजन कर है उसे ही अपन को मन और विचार हो है। इसे अपने भैया बहन को देखो शुद्ध खाना खाना है हमेशा ताजो और पौष्टिक से भरपूर भोजन करना है। बासो खाना अपने भैया बहनों को बिल्कुल नहीं खाना है। अपन अच्छो खाना खे है और पौष्टिक से भरपूर खे है तो देखो अपनो शरीर स्वस्थ रहे और शरीर की रोग रोधी क्षमता बढ़े। और देखो अपने भैया बहनों को साफ सफाई से रहने हैं साफ सफाई को ध्यान रखने हैं। खाना खावे से पहले अपन को हाथ जरूर धोने हैं तभी तो देखो कही जाते हैं कि जैसो खे हो अन उसे ही होवे मन। और भैया बहन हो अब से हो रही है चलवे की बेरा सो चलत चलत बता दें कल की ग्राम सभा के कार्यक्रम। कल अपने भैया बहन सुने ग्राम सभा में धारावाहिक अटकन चटकन भाग 7 बात सुने विद्यार्थियों के लिए एक नई राह तनाव से सफलता तक बाताकार होंगे श्रेयांश दुबेजू। आज की सीख सुने जैसो देश उसे ही भेस और अपनो तपनो बतका हुई है मनोरंजन हुई है जब तक अपनी बहन नंदनी को देव आ गया। भैया बहन राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं सुन रही थी घने कार्यक्रम। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। लीजिए अब सुनिए सुर्खियों में, जिसे हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित करते हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्वाड की भूमिका पर और आने वाले समय में क्वाड की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद टीना।
2: दुनिया इस समय एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, जहां इंडो पैसिफिक सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स

0: Change of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building, and HADR activities.
1: प्रोफेसर, चर्चा की शुरुआत मैरिटाइम सिक्योरिटी से करते हैं. कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस सेक्टर से संबंधित हुए हैं, जिनमें इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव काफी अहम माना जा रहा है. हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा सकें कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव होगा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से.
2: देखिए, जो हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिटाइम ज्योग्राफी है, ये एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें एक साझा परिचालन तस्वीर, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो उसकी एक जरूरत मुझे लगता है चारों देशों को पड़ रही है. क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंद प्रशांत में, इतने बड़े भू राजनीतिक बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए, और उसके बाद मैरिटाइम स्पेस में भी इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है, और उसके साथ उनकी स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज बदल रही है. तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं पर सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात, देश जो चार देश हैं ये अपनी साझेदारी इनकी जो बढ़ाने की जब बात करते हैं प्रशांत में, तो सबसे पहले कि ये देश जानना चाहेंगे क्या इनके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है कि नहीं है, क्या ये चारों देश एक ही तरीके से एक ही असेसमेंट रखते हैं जो हिंद प्रशांत मैरिटाइम स्पेस में हो रहा है. तो उसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत है, उसके लिए निगरानी की जरूरत है. और मुझे लगता है ये जो एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को आज आगे बढ़ाया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होगा कि ये आपको एक, ये जो देश है इनको एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देगा इस रीजन के बारे में, उसके जो यहाँ पर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं उसको, उसके बारे में आगाह करेगा, और कहाँ पर इकट्ठे तौर पर इन चैलेंजेस को इकट्ठा रहकर टैकल किया जा सकता है, उसके बारे में एक रोड मैप बनाने में और आसान हो जाएगा रास्ता. ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रोल होगा. और इसके साथ जब ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ इन चार देशों को मदद मिलेगी, बल्कि वो सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैरिटाइम सर्वेलेंस कर पाए या मैरिटाइम समुद्री निगरानी रख पाए या पूरे जो ये हिंद प्रशांत है इस पर एक अपनी पकड़ बना पाए, तो उसमें इनकी मदद करने में ये क्वाड जो फ्रेमवर्क है ये हेल्पफुल होगा. तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होगा चार देशों के लिए, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक अच्छी पहल है. और इसको मुझे लगता है इससे जो बाकी देशों को भी फायदा होगा वो भी इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे.
1: प्रोफेसर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को विकसित करने से इंडो पैसिफिक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की क्षमता काफी बढ़ जाएगी?
2: जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होगी और उसके साथ साथ उस मॉनिटरिंग से आप कैसे आपकी जो एसेट्स हैं उनको आप कैसे ऑपरेशनल यूज के लिए ला सकते हैं. चारों जो देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मैरिटाइम एसेट्स काफी हैं, लेकिन ये मैरिटाइम एसेट्स जो इनके हैं वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं. कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में डोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में है, जापान साउथ ईस्ट चाइना सी एरिया में डोमिनेंट है. तो इनको इकट्ठा करके, इनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब आप कोई तस्वीर बनाएंगे इस रीजन की, तो आपको एक तो पूरी टोटैलिटी में समझ में आएगा कि कहां पर क्या चल रहा है, और उसके साथ अगर आप किसी और देश की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करना चाहते हैं, सर्वेलेंस उसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज उनको और ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, तो सबकी जो पहली स्टेज होती है वो सर्वेलेंस होती है. तो मुझे लगता है वो जो एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की बात हम कर रहे हैं उससे इस जो पहल है इसको और गति मिलेगी और बाकी देशों को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा.
1: प्रोफेसर, क्वाड ने इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है. आज के दौर में जब रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जा रहा है, क्या यह इनिशिएटिव चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है?
2: जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है, जहां पर सभी देश जो हैं वो, जो पूरी दुनिया है वो इस समय एक तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है. और जिस तरह से जो डोमिनेंस कुछ देशों की है क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, वो किस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या देशों के सामने है, खासकर उन देशों के सामने जिनके पास इंडिजिनस मिनरल्स नहीं है और जो बहुत डिपेंडेंट है बाहरी दुनिया के ऊपर. तो मुझे लगता है जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है आज क्रिटिकल मिनरल्स, जिसका की एम होगा कि कैसे करीब करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर्स को मोबिलाइज करें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि सिक्योर और रिजिलियंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद प्रशांत में

0: बन पाए, इसकी जो एक कोशिश करेगा, ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और उन देशों को जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज कर रहे हैं, कि आप की ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है अगर वो दूसरे देशों की तरफ से देखें तो वो उसको कम करने की कोशिश, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब आप हम आर्थिक तरक्की की आज बात करते हैं, उसमें जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल सेंट्रल है। तो आप अगर डेवलपमेंट की भी बात हम करें, अगर हम डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारी हैं उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स क्या रोल होगा और कैसे बाकी देश जो क्वाड के देश हैं, क्वाड मेंबर्स हैं, वो किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव दुनिया को या हिंद प्रशांत के देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इनिशिएटिव में नजर आता है। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि वही जब स्ट्रेंथन आप करेंगे तब आप हिंद प्रशांत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। एक तीसरा अहम इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया, वो है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। अब प्रोफेसर, मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में ये कितना अहम है, और खास करके हम देख रहे हैं कि ये लगातार एनर्जी क्राइसिस हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा गया, और अभी के मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो को भी अगर देखें तो ऐसे में क्या एनर्जी रेजिलियंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी एक काफी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है?
0: जिस तरह से आपने जिसका जिक्र किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और अब जो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के ऊपर अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। और हमने ये बात अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि हम हमेशा ही मानते थे, दुनिया ये मानती थी कि अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए इसेंशियल है और इसलिए हमेशा खुला रहेगा, उसमें जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, वो मुझे लगता है उस एक तरह से अलार्म बेलिटी के लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि जो चार जो पिवोटल पावर्स हैं हिंद प्रशांत की, वो इस बात को लेकर सीरियस हैं कि कैसे जो प्रत्येक देश के ऊर्जा क्षेत्र के संसाधनों को, उनकी क्षमताओं को पहचाना जाए और उनका लाभ उठाया जाए, साथ ही उनसे संबंधित जो रणनीतिक पेट्रोलियम प्रणालियां हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो कहीं पर जब हम चार देशों की बात करते हैं तो ये अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जो कोशिश इसमें है वो नजर आ रही है।
1: प्रोफेसर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई एंगेज इनिशिएटिव के तहत एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की ओर भी बढ़ रहा है?
0: जो हम देख रहे हैं अभी क्वाड में जो हो रहा है, उसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्वाड न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर, सामरिक मुद्दों के ऊपर अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उसको वापस किस तरह सेंटर में लाया जाए, कैसे इस डिस्कोर्स के सेंटर में लाया जाए, इसकी पहल काफी ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटी से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे आपकी सामरिक जो क्षमताएं हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश, पर उससे किस तरह से इकोनॉमिक रेजिलियंस और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साधा जाए, इसकी कोशिश हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें हमने ये कोशिश देखी है इन चार देशों की कि एक ऑल्टरनेटिव मॉडल सेट करने की कोशिश है, कि हम कि क्वाड जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि जो क्वाड कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कैपेसिटीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको कैसे रीजन के लिए लेवरेज किया जाए, मुझे लगता है उसमें ये जो धारणा है इस क्वाड के इनिशिएटिव्स में। और जब हम एआई एंगेज इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसमें भी क्या कैसे एआई को, इमर्जिंग टेक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेवरेज कर पाएंगे, इसके ऊपर जिस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह के फंड्स आने चाहिए, जिस तरह से इसको आप, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको सशक्त बनाना है, काफी सारी जो इकोनॉमीज हिंद प्रशांत में है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, तो अगर हमको उन इकोनॉमीज को रिजिलियंट बनाना है, डेवलपमेंट को अपने सेंटर में रखना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये जो अल्टरनेटिव है कि क्वाड का मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है कि जहां पर दूसरे देश आते हैं, पैसा देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज और चले जाते हैं। क्वाड का मॉडल अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश है दुनिया भर में, हिंद प्रशांत में, खासकर उन देशों में जो जिनके पास अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज कम है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस मामले में ए आई एंगेज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, और ए आई और इमर्जिंग टेक से आप कैसे अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साध सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा नमूना क्वाड देशों ने पेश किया।
1: प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर अगर बात करें, और जिस तरह से हमने देखा कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जिस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों में देखा गया कि कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स सबने मिलकर लॉन्च किया है, कई ऐसे नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है जिसमें सहमति बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत था क्वाड के द्वारा कि आने वाले समय में इस ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और बढ़ सकती है?
0: बिल्कुल, मुझे लगता है जितना विस्तृत क्वाड का एजेंडा आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से क्रिटिकल एरियाज में क्वाड इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसमें ग्रेटर एंगेजमेंट की तरफ इशारा है, उसमें इशारा है कि कैसे आप ज्यादा क्लोजली काम कर सकते हैं एक साथ, अगर आप आए, चार बड़े देश आए और उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरे देशों को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा है। तो एंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ेगा आगे, मुझे लगता है। ये बात कही गई शुरू में जब ये समिट शुरू हुआ कि कैसे एक क्वाड आइडियाज से निकलकर ऑपरेशनल इश्यूज पर प्रैक्टिकल इश्यूज की तरफ मूव कर रहा है, और मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ऑन द ग्राउंड ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा क्वाड मेंबर्स में, और वो देश जो क्वाड की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं कि क्वाड अगर अच्छा करेगा इन सेक्टर्स में तो उनसे उनका भी फायदा।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की बैठक से ये बड़ा संदेश दे दिया गया है उन सभी को कि ये चार देश अभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों का ही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक रियालिटीज क्या होंगी और जियो पोलिटिकल रियालिटीज को भी शेप करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म थी यादों की बारात। आइए अब आपको सुनवाते हैं द ग्रेट गैम्बलर फिल्म में अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार को। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: Il tempo vola. Prendilo, prendilo, amore mio.
1: अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार को. फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर. मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है. लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी एट द रेट 90 के अंतर्गत विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय मेकिंग रील प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता एवं कंटेंट क्रिएटर धर्मेन्द्र लोधी से बातचीत.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई. क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है.
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है. सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी. आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है.

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। श्रोताओं, आज हमने आमंत्रित किया है हमारे विश्व रेडियो दिवस पर, राष्ट्रीय सम्मान भी आपको मिला हुआ है रील बनाने में, और आपने आकाशवाणी की जो यादें हैं उस पर एक विशेष रील भी बनाई थी। तो आज एक युवा हमारे बीच हैं और जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, पत्रकारिता भी आप कर रहे हैं और जुड़े हुए हमारे बीच हैं, धर्मेंद्र लोधी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: धर्मेंद्र जी, हम आपकी यात्रा के बारे में बात करेंगे। आकाशवाणी@90 जो आकाशवाणी का एक स्वर्णिम युग है वो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं। अभी भी कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमारे बीच आते हैं आकाशवाणी दूरदर्शन में। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अपने, जो आपने आकाशवाणी उस समय से लेकर आज तक अपने जीवन में रचाया बसाया है, क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी?
2: सबसे पहले तो आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सर, मैं बचपन से ही रेडियो सुनता आ रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी रेडियो के बड़े शौकीन रहे हैं। उन्होंने आकाशवाणी छतरपुर जब से स्थापना हुई है, लगभग 50 वर्ष होने वाले हैं, तब से वो सुन रहे हैं। और मैंने जब से होश संभाला है, ये मैं ये कहूँ कि रेडियो मुझे विरासत में मिला है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी से रेडियो सुन रहा हूँ। बचपन में रेडियो सुना, और बचपन में कार्यक्रमों को मैं जोड़ूं तो बाल सभा उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था
1: जी जी।
2: और युवावस्था में तब आया तो युववाणी कार्यक्रम मेरा प्रिय हो गया। इसके अलावा जितने भी रेडियो के कार्यक्रम आते हैं, सुबह से जब वंदे मातरम से कार्यक्रमों की शुरुआत होती है और देर रात तक जब समाचार बंद होते हैं, इस दरमियान मैंने सारे कार्यक्रम रेडियो के सुने हुए हैं। और कुछ और फेवरेट कार्यक्रम जैसे आकाशवाणी छतरपुर का हेलो फरमाइश तो मेरा बहुत ही फेवरेट है। अभी कार्यक्रम चलता है जब आप गुनगुना उठे, ये मुझे बहुत पसंद है। और ग्राम सभा कार्यक्रम लगातार सुनता रहता हूँ।

0: ऐसे कार्यक्रम है, मैं सभी कार्यक्रमों का आनंद पहले लेता था, अब भी लेता आ रहा हूँ।
1: जी बहुत अच्छी आपने बताया धर्मेंद्र जी। देखिए जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हमारे प्रेजेंटेटर हैं या आकाशवाणी से जुड़े हुए हमारे जितने भी श्रोता भाई बहन हैं, वो निश्चित रूप से आकाशवाणी के कार्यक्रमों को बखूबी जानते हैं, कैसे वो हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कैसे हमें बनाते हैं। हम यूं कहें तो आकाशवाणी हमारे जीवन में और हमारी दिनचर्या में रची बसी है। जो राष्ट्रीय सम्मान आपको मिला है रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, आकाशवाणी के जो हमारे विशेष अधिकारी उनने आपको सम्मानित किया और देश में प्रथम स्थान पर आपकी बनाई हुई रील देखी, सबने सराही है आकाशवाणी की यादें। तो इस संदर्भ में जानेंगे आपके मन में कैसे आया कि हम आकाशवाणी की यादें बनाएं, आपको जो मौका मिला, जो वहां से आपको मंच मिला कि आपको रील बनानी है और आप इसमें हिस्सा लीजिए। तो इस संदर्भ में कुछ आप बताइए कैसे आपने काम किया और कैसे आकाशवाणी से जुड़ी यादों को सहेजा।
0: सर, ये हम सभी को विदित है कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे होने पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और इसी संदर्भ में आकाशवाणी दिल्ली की ओर से एक सूचना जारी हुई थी कि आकाशवाणी एक रील मेकिंग कंपटीशन नेशनल लेवल पर आयोजित करने जा रही है। तो उसकी सूचना मैंने आकाशवाणी की वेबसाइट पर देखी थी। उसमें क्राइटेरिया था कि विभिन्न विषय, दो तीन विषय उसमें दिए हुए थे। एक आकाशवाणी की यादें था और आकाशवाणी और विविध भारती, ऐसे करके तीन विषय थे। उनमें से 1 मिनट की रील हमें बनानी थी आकाशवाणी के ऊपर। तो मैं तो आकाशवाणी का नियमित श्रोता ही हूँ, आकाशवाणी की बहुत सारी यादें बचपन से ही लेकर आज तक मेरी स्मृतियों में हैं। तो मैंने सभी को ध्यान में रखकर रील बनाई, उसमें जो कंटेंट डाला ऐसे कि सुबह से एक श्रोता कैसे उठता है, रेडियो सुनता है और समाचार प्रभात सुन रहा है, और बहुत सारी ग्रामीण जीवन को मैंने उसमें दर्शाने का प्रयास किया है। और फिर वो इस तरीके से रील बना के मैंने वहां पे सबमिट की। और जब विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जा रहा था, उसी दरमियान रायपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का आकाशवाणी का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो उसमें आकाशवाणी के जो डीजी साहब हैं उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की कि इनको प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है इनकी रील के लिए। तो सर, मुझे जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई उस पल की कि इतने बड़े स्तर पर मैंने ये पुरस्कार जीत लिया है और आकाशवाणी के लिए कुछ करके जीता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था।
1: बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए आकाशवाणी के माननीय डीजी साहब ने आपको सम्मानित किया और हम भी आकाशवाणी से जुड़े हुए जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं और हम अपने प्रसारण कर्मियों की ओर से भी आपको बधाई देते हैं। देखिए बहुत सारे श्रोता जुड़ते हैं, लेकिन ऐसे श्रोता जो आकाशवाणी को अपने जीवन में इतना बसा रहे हैं, आकाशवाणी से इतने कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, एक अलग ही बात आप में है और आप निश्चित रूप से उन सबसे बेहतर हैं जो आज भी हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का हमारे जीवन में क्या योगदान है और आप देखते हैं एक छोटे से गांव से लेकर आज शहर की भीड़ भाड़ में आप पहुंचे हैं, तो देखते हैं कि आकाशवाणी ने लोगों को जोड़ने का काम किया। हमारी संस्कृति हो, हमारी धरोहर हो, हमारी लोक संस्कृति हो, इन सबको आगे बढ़ाने का काम आकाशवाणी अपने स्तर पर करती है, कई कलाकारों को भी अवसर देती है। तो क्या आप देखते हैं धर्मेंद्र जी?
0: सबसे पहले तो सर मैं ये कहूंगा कि आज मैं जिस मुकाम पर पहुंच रहा हूं और जहां पहुंचना चाहता हूं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का ही मानता हूं। आकाशवाणी का मेरे जीवन में महत्वपूर्ण और अद्वितीय स्थान है। और वहीं बात आकाशवाणी की जाए तो आकाशवाणी कैसे लोगों के जीवन को बदलने में सहायक है, तो इस बात से ले सकते हैं कि आकाशवाणी भारत में जनसंचार का प्रमुख माध्यम है और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्थापित हुई एक ऐसी संस्था है जिसने न केवल भारतीय जनमानस को मनोरंजन पहुंचाया बल्कि कि उसको समय समय पर सूचित किया, जागरूक किया और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया है। आकाशवाणी लोक संस्कृति को सहेजने का कार्य करती है, युवाओं को उनकी कला को निखारने का अवसर देती है और समय, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा सर कि आज का जो डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है, लगातार हमारे सामने फेक न्यूज और तोड़ मोड़ कर खबरें हमारे सामने आ रही हैं। इस बीच आकाशवाणी की जो आकाशवाणी के समाचार हैं उनकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता इतनी बड़ी है कि आपके सामने एकदम सत्य और पारदर्शितापूर्ण तरीके से खबरें पहुंचती हैं। तो सही खबर यानी आकाशवाणी की खबर, यदि आप आकाशवाणी के समाचार को सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सही जानकारी और सही समय पर पहुंच रही है।
1: बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर हरसिंगौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो शिक्षा के प्रसार प्रसार में आकाशवाणी की क्या भूमिका आप देखते हैं, जब हॉस्टल कैंपस से लेकर हमारे क्लासरूम तक शैक्षिक कार्यक्रम भी आकाशवाणी पहुंचाती है?

0: आकाशवाणी ने सर केवल मनोरंजन और सूचना ही नहीं पहुंचाई है, लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें जो विद्यार्थी होते हैं वो आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुनकर बहुत ज्यादा उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। समाचार तो एक है ही माध्यम, लेकिन बहुत सारी ऐसी जन जागरूकता के कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं जिनको सुनकर श्रोता बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन अपने अंदर करते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो आज भी आकाशवाणी से निरंतर जुड़ा हुआ हूं और जितने भी कार्यक्रम आकाशवाणी के आते हैं और भेंट वार्ताएं हो गई, परिचर्चाएं हो गई, आप विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों को आमंत्रित करके उस विषय से संबंधित योजनाओं से संबंधित जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, जानकारी पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोग शिक्षित होते हैं, जागरूक होते हैं और अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं।
1: जी जी, एक ऐसा लड़का जो गाँव के अंचल से शहर के अंचल में प्रवेश कर गया और राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान मिला, तो धर्मेंद्र जी कैसा महसूस होता है आपको कि देखिए आप भी उनसे अलग नहीं है, गांव में जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, कभी गिल्ली डंडा कभी पहिए से चल रहे हैं, वही दौर रेडियो का है और कितनी बढ़िया रील आपने बनाई, मैंने भी देखी है, वाकई में ऐसी जो यादें आपने उसमें सहेजी हैं, तो इसकी जो फीलिंग है उसको भी मैं आप श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूंगा, क्या आपने ऐसा लगा?
0: बड़ी खुशी महसूस होती है सर, मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे मुझे मालूम हुआ कि मेरा प्रथम प्राइज मुझे आई है और गूगल पे बखूबी मेरा नाम दिख रहा है कि फर्स्ट प्राइज विनर धर्मेंद्र लोधी, सर मैं खुशी से झूम उठा था और एकदम मैं सागर में था अपने रूम पे तो नाच उठा था, बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई थी। और आप बात कर रहे हैं कि गांव के से बढ़ के शहर तक पहुंचना और इस प्रकार की उपलब्धि पाना मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़े मायने हैं और मैं इसको हमेशा अपनी स्मृति में सजे रखूंगा। और मैं पहले भी कहते आ रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि मैंने ये सब क्यों कर पाया, क्योंकि मैं रेडियो से जुड़ा रहा और रेडियो के कार्यक्रमों को समझता रहा, इसलिए मेरे अंदर वो विजुअल्स तैरते रहे कि मैं इस प्रकार की कोई रील बना सकता हूँ जो निश्चित तौर पर लोगों को बड़ी पसंद आएगी और जो वहाँ की कमेटी है उसने उसको सराहा और विनर घोषित किया।
1: बिल्कुल धर्मेंद्र जी, संस्कृति और धरोहर के संरक्षण में रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आप ग्रामीण परिवेश में पले पोसे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या आप देखते हैं जो आकाशवाणी दूरदर्शन ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, हम चाहे डीडी नेशनल की बात करें तो रामायण हो, महाभारत हो या और भी कार्यक्रम, जो क्रिकेट कमेंट्री की भी बात करें जैसा रील में आपने दिखाया कि कैसे हम रेडियो को लिए घूमते थे, चाहे इंग्लिश में वो बात करें कमेंट्री बताएं या हिंदी में बताएं, तो उसके पीछे क्या कारण देखते रहे?
0: सर सबसे पहले तो आपने लोक संस्कृति और कला की बात की है, तो निश्चित तौर पर ये सभी जानते हैं कि आज का जमाना तो सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है, लेकिन आज के अपन 15-20 वर्ष पूर्व चले जाएं तो आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसके जनसंचार का एकमात्र माध्यम था जिसके जरिए लोगों तक सूचनाएं, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचता था। साथ ही साथ जो जिस क्षेत्र में केंद्र आकाशवाणी केंद्र स्थापित है, जैसे कि अपना आकाशवाणी छतरपुर है, तो ये पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को कवर करता है और जो यहाँ की संस्कृति है, लोकगीत हो गए, लोकनाट हो गए, बुंदेली नाटक जो आकाशवाणी के जरिए नाटक भी प्रसारित किए जाते थे मुझे याद है, बहुत अच्छा लगता था। और यही तो है, बुंदेली के लोकगीत, लोक कला, लोक साहित्यकारों को बुलाकर आकाशवाणी विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करता है तो निश्चित तौर पर लोगों तक पहुंचते हैं और यही तो संस्कृति का संरक्षण है।
1: जी, आज युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे महापुरुष भी हैं, हम चाहे विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने यही कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे युवा भटक रहा है, आप जो रील के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए गांव की जो संस्कृति वो क्या थी, हम कैसे अपने बुजुर्गों का सम्मान करते थे। एक रील में मैंने देखा जब आप लोग, आपकी जो टीम बना रही थी, कि पहले जमाने में विवाह कैसे होते थे और कैसे जो संस्कृति को हम धरोहर के रूप में सहेजने का प्रयास कर सकते हैं, तो ये जो भटकाव की स्थिति होती है उससे कैसे निकले?
0: देखिए सर, जमाने के साथ आदमी को चलना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन उन सबके बीच में जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारे आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, आचरण की सभ्यता है, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो और हमारा बिहेवियर है वो किस प्रकार का दूसरे के प्रति होना चाहिए, इन सबको यदि हम नैतिक तरीके से निभाते हैं, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी और उत्तरदायित्व की भावना यदि हमारे अंदर है, तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हैं। और ये इसी बात को ध्यान में रखकर हम कोशिश करते हैं कि हम रीलें बनाएं, लोगों को जागरूक करें, अपनी नैतिकता की ओर उनको ले जाने के लिए आदर्श करें, यही हमारा प्रयास रहता है।
1: कुछ यादें, कुछ संस्मरण भी हम संक्षेप में सुनना चाहें।

0: धर्मेंद्र जी, जब आप पहुंचते हैं लोगों के बीच में कि आप रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी बात आप कहना चाहें हमारे श्रोताओं से, तो हमें कैसा महसूस होता है? आज समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है।
1: देखिए सर, तकनीकी है, नई नई तकनीकियाँ आती रहती हैं और उसके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। हमें मेरिट्स को ध्यान में रखकर तकनीक को अपनाना चाहिए और उसका सही और सार्थक दिशा में यदि हम उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, हमारे लिए काम को आसान करती हैं। अब डिजिटल युग है तो मैंने पहले ही कहा है कि सूचनाओं की बाढ़ आ गई है, हर कोई पत्रकार बन जा रहा है, खबरें दे रहा है, तो लेकिन इन सब के बीच में हमें खुद को इतना जागरूक होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए कि हम खबरों को समझ सकें, जान सकें कि किस खबर में समाचार कितने विद्वान हैं, कौन सही है कौन नहीं है। ये हमें परखने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए।
0: किसानों की हम बात करें तो उनका सच्चा साथी है रेडियो। आप किसानों के लिए भी रील के माध्यम से मोटिवेट करते हैं कि हम कैसे अपनी खेती में अच्छे से अच्छे जैविक तरीके से खेती करेंगे, तो इससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आज खेती में कितने नवाचार हो रहे हैं, नई जानकारियां हों या उन्हें सही सूचनाओं हों या भेंट वार्ताएं हों, इनके माध्यम से रेडियो अपनी पहुंच उन तक बनाता है और वो जब सुबह से खेती किसानी हो या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपने खेती में उपयोग करते हैं तो उन्हें दोहरे लाभ होते हैं और उनकी आय में वृद्धि निश्चित रूप से हो रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे ग्रामीण परिवेश में हमारे अन्नदाता किसानों के लिए रेडियो ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
1: सर, रेडियो की बात करें और खासतौर पर आकाशवाणी की, तो आकाशवाणी के जितने भी केंद्र हैं सभी से किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम जरूर जाता है और भारत में कृषि क्रांति या कृषि को आगे लाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैंने खुद और आज भी लगातार किसानवाड़ी कार्यक्रम या ग्राम सभा कार्यक्रम सुनता रहता हूँ और गांव के बड़े जो किसान हैं वो भी लगातार किसानों का जो कार्यक्रम आता है उसे सुनते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे हमें किस समय और सही तकनीक के साथ खेती किसानी को करना है और ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त करने का प्रयास करना है। और जो जानकारी दी जाती है विशेषज्ञों के द्वारा कि कैसे कीटनाशकों और रासायनिकों का उपयोग करें, कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, जैविक खेती को अपनाएं, तो ये सब किसान बड़ी चाव से सुनते हैं और जो सलाह है आकाशवाणी के द्वारा दी जाती है उसको अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये लाभप्रद होती है।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक को आप दूर करें, क्योंकि कई बार हमारे युवा सोचते हैं कि वो आगे निकल गए हैं, उन्होंने इतना हासिल कर लिया और 2 दिन में 3 दिन में तो हम देखिए मशहूर हो नहीं सकते, तो कैसे वो अपने जीवन की दिशा को बदलें और आगे बढ़ें? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आप करना क्या चाहते हैं, फिर उस दिशा में सतत प्रयास करें। हम देख रहे हैं कि आज का युवा आलसी होता जा रहा है, 24 घंटे मोबाइलों में लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये हमें ध्यान में रखना होगा कि हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। अपनी एक दैनिक दिनचर्या बनाएं कि किस समय हमें क्या काम करना है। जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, किसान अच्छे से किसानी करें, जिस भी फील्ड में है यदि पूरे मेहनत से, निष्ठा से और ईमानदारी से यदि अपने कार्य को करता है तो निश्चित तौर पर वो जो सोच रहा है, जिस सफलता की ओर आगे बढ़ना चाह रहा है, वो उसे प्राप्त कर लेगा।
0: जी धर्मेंद्र जी, आगामी क्या रूपरेखा आपकी है, क्या आपने सोचा है कि हम इस क्षेत्र में आगे जाना चाहेंगे? कुछ आपकी भविष्य की प्लानिंग हो वो भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। एक ऐसा युवा जो देखिए ग्रामीण परिवेश से निकला और आज इतने राष्ट्रीय सम्मान उसको मिल चुके हैं, और आगे क्या आपने सोचा है कि हम कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे, क्या कुछ आप करना चाहेंगे?
1: सर, मास मीडिया के क्षेत्र से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र से, तो मेरी ये सोच है कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा और आगे हो सकता है कि मैं कोई न्यूज चैनल खोलने का मेरा सपना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके साथ फिल्म मेकिंग का काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई भी हैं, तो उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा।
0: बिल्कुल धर्मेंद्र जी, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं और आप आगे बढ़ें और हमारे और युवाओं को मौका दें। देखिए इंसान वही है जो इंसान के काम आए, है ना धर्मेंद्र जी? अगर एक व्यक्ति भी बदलाव लाना चाहता है तो उसे अपने में पहले बदलाव लाना होगा। जब अच्छी सोच के लेकर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं और दूसरों को भी हम उनके मुकाम तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो श्रोताओं, आज हमारे युववाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच थे एक पॉडकास्टर और सोशल मीडिया से कंटेंट क्रिएटर, हमारे रील बनाने में बहुत अच्छे से अच्छे भूमिका निभाने वाले और रेडियो के श्रोता भी हैं आप, और राष्ट्रीय सम्मान भी आकाशवाणी के लिए रील बनाने में आपको मिला हुआ है, धर्मेंद्र लोधी जी से ये विशेष बातचीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी @90। और 7 अगस्त

0: 2026 को आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो इस क्रम में हमने धर्मेंद्र लोधी जी से बातचीत की, उनके जीवन के बारे में कुछ जाना। आप जरूर इससे लाभ लेंगे और उनके जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र लोधी जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपने जीवन के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं को धन्यवाद।

0: Akashwani at 90.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी एट द रेट 90 के अंतर्गत विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय मेकिंग रेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता एवं कंटेंट क्रिएटर धर्मेंद्र लोधी से बातचीत। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्र एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। और इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है aircharpur1976@gmail.com। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR पर हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे

0: जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और

संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग

0: कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Manthan.
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद।
1: साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
2: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलोबरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने चार पांच मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायो फोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम ICMR के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से हम ज्यादा बायो फोर्टिफाइड किस्में पैदा करें और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक, जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो ICMR का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है, और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8-9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है, उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें कि आपका नॉर्मल भोजन

0: करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम आईसीएमआर के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
1: जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खासतौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ आईसीएआर की तरफ से कुछ काम हो रहा है?
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है और मसूर की 2 तथा चना और फावाबीन की 1-1 किस्म है।
1: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है?
0: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले ये माननीय आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का जब किसान तक बीज जाता है तो उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको आईसीआर में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी भी बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक एनजीओ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीड सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी एनएफएसएम में भी जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से और हमारे केवीके जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय, आईसीआर के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल, तो आईसीएमआर और आईसीएआर की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे, जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर डीके यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
0: धन्यवाद।
1: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल आईसीएमआर में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर प्रियंका बंसल। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे, तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
2: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहां बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाए जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जो ये सेहत मिशन है इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है, एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है जिसमें आईसीएआर जो है वो अपने बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हैं।

0: और उन्हीं चीजों को हम उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है वो आईसीएमआर टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म

0: और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है?
1: सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं, उससे हम धीरे धीरे कुपोषण के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है।
0: जी, तो जो स्वास्थ्य के मानक हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
1: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
0: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में?
1: देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है। कि फसल तो बन गई, मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
0: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस मेल आईडी पर अपनी पसंद भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है AIRCHHATARPUR1976@gmail.com।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के पत्रों।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में हिना फिल्म का गीत। शब्द रचना रविंद्र जैन की थी और संगीत निर्देशन भी रविंद्र जैन का ही था और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र थे ग्राम व पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरवान सिंह नांगल संतोष कुमार नांगल प्रताप सिंह नांगल अभिषेक कुमार नांगल शिवम कुमार नांगल गुड़िया नांगल कविता नांगल गीता नांगल कबीरजीत नांगल और इनके मम्मी पापा। इसी क्रम में ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीये राधिका गजबीये बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीये। इसी गीत की फरमाइश की थी एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम ने गुमला झारखंड से। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसु तासु अर्णवानंद और सत्यमानंद। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन जीवीएम जैन और दिग्दर्शन भाई। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी अनीता सैनी गौरव सैनी और ईशान सैनी। ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे उषा बुरांडे अनुषे बुरांडे और धनश्री बुरांडे का। इसी क्रम में अगला है बलहार शाह से सूरज लौंडे प्राची और एकलव्य। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता साहू शशांक साहू और सीमा साहू। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये मेल हमें भेजा है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास और उषा ने। यह अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पोस्ट गौना कुसमाड़ थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव दीपक कुमार नामदेव द्रौपदी देवी नामदेव रामदेवी नामदेव ब्रजेश कुमारी नामदेव अखिलेश कुमारी नामदेव लखनलाल नामदेव चाहना नामदेव आकाश नामदेव रानी परीद नामदेव और इनके मम्मी पापा। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। यह अगला मेल आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज और पिट्टा बजाज ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला सुरलकर और ओम कुमार। यह अगला मेल आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बेबी चाहत और सादिया। पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभि शाह अश्विन शाह मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह और इनके परिवार वाले। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम अकरम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहट परवीन। और इसी क्रम में अगला मेल आया है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा का। आइए अब आपको सुनवाते हैं सरगम फिल्म का गीत। आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की है शब्द रचना आनंद बख्शी की संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। यह अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है गांव टोरोवाला जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी डॉक्टर प्रियंका थांदी डॉक्टर प्रशांत थांदी डॉक्टर प्रेम थांदी वेबी वामिका और वाणी थांदी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊदनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव। गांव जाखोद से शंभूल दयाल खटक विमला देवी अमरजीत खटक सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार कुमार।

बिहारी पूजा खट्टक और इनके परिवार वाले नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलहत जहां नाज, फरहत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुशहत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और शुभचंद्र। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। घमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू। यह अगला मेल आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। दतरेंगी भाट्टा पारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां ने ये हमें मेल भेजा है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहावकर, निर्मला नुहावकर, विशाल नुहावकर और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। यह अगला मेल आया है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। और ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक का। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं सरगम फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में सरगम फिल्म का गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र थे नरसिंगर पुरवा छतरपुर मध्य प्रदेश से, दयाशंकर कुशवाहा, भवानी देवी, नारायण दास कुशवाहा, इंदु देवी, भागीरथ कुशवाहा, ममता देवी, यश राज, आयुष, कुमारी भारती कुशवाहा और रिखी राम का। इसी क्रम में यह अगला मेल प्राप्त हुआ है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वाले। यह अगला मेल आया है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा का। महेश गेट नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनके परिवार वाले। यह अगला मेल आया है बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव का। ग्राम पोस्ट गौना कुसमाड़ थाना सौजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर झांसी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल नामदेव, चाहना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव, सुरभि नामदेव, पायल नामदेव और इनके मम्मी पापा। यह अगला मेल आया है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले और इनके परिवार वाले। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन। और इसी क्रम में अगला मेल आया है रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान का हनुमानगढ़ राजस्थान से। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत। इस गीत के गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं रविंद्र जैन और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। अगला मेल आया है कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और इनके परिवार वाले। अगला मेल आया है ग्राम मामना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का। ग्राम बीलपुर जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से साधु बाबा, बीरेन सिंह तोमर, संजय, दीपक और सोनू तोमर। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और इनके समस्त परिवार वाले। देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, कुमारी हाव्या, रजा कुमारी टानिया और इनके परिवार वाले। और इसी क्रम में यह अगला मेल हमें आया है ग्राम पोस्ट गौना कुसमाड़ जिला ललितपुर झांसी से हरदास नामदेव, रामा नामदेव, रूबी नामदेव और अभय नामदेव का। कृष्णा घोडके, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, यशराज शिंदे, सुनीता शिंदे, रोहिदास चौक पंढरपुर से ये हमें मेल प्राप्त हुआ है। ये अगला मेल आया है ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर।

प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता वोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी वोट। ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से जयपाल, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागनी, रिया, देवांशी, रेनू और रोनिका यादव का। ये अगला पत्र आया है जंटपुरा पनवाड़ी से महोबा, उत्तर प्रदेश, देवीदीन अहिरवार, सुनीता, दिनेश, कपिल, पूजा और अहिरवार का। ये अगला पत्र आया है ग्राम तौरी, तहसील भांडेर, जिला दतिया से सुरेश केवट, पायल, छोटू, खुशी, रेखा देवी और इनके परिवार वाले। ग्राम बपोस तालगांव, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से संतोष कुमार नांगल, मेहरबान सिंह, अभिषेक, शिवम और इनके मम्मी पापा। ग्राम मजगुआ गला पोस्ट अमरोनिया, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर से लखनलाल यादव, नेहा यादव, अनन्या, अनुष्का और अभिमन्यु यादव। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर व साथियों की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत निर्देशन है रविन्द्र जैन का।

अभी आप सुन रहे थे राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत, आवाज थी लता मंगेशकर व साथियों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं केके की आवाज में काइट्स फिल्म का गीत। शब्द रचना फराज की है, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं ग्राम खड्डी जिला छतरपुर से कुलदीप त्रिपाठी, अदिति त्रिपाठी, माही त्रिपाठी, किश्नु दीक्षित और ब्रजेश मुखिया, विभूति नारायण उपाध्याय, दीपाली बबेले, पुज्जू जी और सा ये हमें मेल भेजा है झांसी से। इसी क्रम में ये अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम दुर्गापुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश से अनिल अहिरवार, ललिता, शिवदयाल, संतोष, रमकुबाई और इनके परिवार वाले, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, ग्राम विडौरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, महिपाल सिंह गुर्जर और समस्त परिवार वाले, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवीर, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इनके परिवार वाले, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार वाले, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामर्ग शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडा ने, उमरिया मध्य प्रदेश से ये मेल आया है संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह और विकास सिंह, ग्राम गुरियाना पोस्ट पटना थाना नाराहट जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से सीताराम नामदेव, सिद्धार्थ नामदेव, ग्राम बचरई जिला ललितपुर से दिलीप कुमार नामदेव, ग्राम सिद्धबाहा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से नरेंद्र नामदेव, पप्पू नामदेव और इनके परिवार वाले, वाड़ी खाम गांव से अनंता वाड़े, रामेश्वर वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी और समस्त वाड़े परिवार, आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, और ये अगला मेल आया है हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं काइट्स फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत। आवाज थी अलका याग्निक और सोनू निगम की। शब्द रचना जावेद अख्तर की थी। संगीत निर्देशन था अनु मलिक का। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र थे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित। अगला मेल प्राप्त हुआ है रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़के। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान। डांगरी से बाबूराम जयपाल। खलीफों की बावली से खुदा बख्श खलीफा। जलालाबाद वेस्ट से विशाल प्रिया दिशानी। इसी क्रम में ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ ग्राम कोहरवास तहसील ईशागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा, मनकोबाई कुशवाहा, निशा कुशवाहा, प्रियंका कुशवाहा, इश्का कुशवाहा, खुशी कुशवाहा, ऋषि नारायण कुशवाहा, निधि नारायण कुशवाहा, ओम प्रकाश कुशवाहा और अजय कुशवाहा। इसी क्रम में अगला पत्र है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जय मंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट। ग्राम जमरेही सानी पोस्ट मजीठ जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अर्चना द्विवेदी, सत्येंद्र मोहन द्विवेदी और प्रवीण मोहन द्विवेदी। वंदना त्रिपाठी, लोकपत त्रिपाठी, आयुषी और आराध्या त्रिपाठी का ये पत्र प्राप्त हुआ है इंदिरा नगर उरई जिला जालौन से। सिंगाड़ी नदी कबीर आश्रम छतरपुर से महंत बाबूदास कबीरपंथी, राकेश दास, सुदामा दास, धर्मदास, रामस्वरूप दास, सीमा वर्मा और संध्या वर्मा। ग्राम पिपरा माफ जिला महोबा से मोहनलाल प्रजापति, हरिदास, नितिन, राहुल, छविलाल, भागीरथ और इनके मम्मी पापा। ग्राम सौरई जिला ललितपुर से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता और इनके परिवार वाले। ग्राम खजरी पोस्ट कछौरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ से अजय अहिरवार, नीलम शिवानी सिंह, आयुष प्रताप, राघवेंद्र, संध्या, लाड़कुंवर, नारायण दास, दिनेश, जितेंद्र, अनिल और सुशील। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शैफाली, शैफिया अरोड़ा, पूजा और मास्टर डेविस। मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललित, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। ग्राम पोस्ट पिपरा माफ महोबा से गोलू प्रजापति, वीरेंद्र, दानवीर और प्रियंका। इसी क्रम में ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है राजपूत कृषि फार्म ग्राम मिर्तला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, भूपेंद्र सिंह, गुरु महाराज, गौरव सिंह, जानवी और विनीता सिंह का। ग्राम पोस्ट गरौली शाह तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ से चतुर्भुज अहिरवार, विनोद, रानू, ब्रजेश, लक्ष्मी, सुषमा, ज्योति, आरती और इनके मम्मी पापा। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर मट्टू, संगीता, हर्षित और वैभव मट्टू। ये अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है जय मां सरस्वती रेडियो श्रोता संघ ग्राम मामना पोस्ट सलारपुर तहसील व जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से सोहन सिंह राजपूत, एल के राजपूत, आकाश, सोनम सिंह, प्रियांशी और एस एस राजपूत। आजाद रेडियो लिसनर्स क्लब वलीदपुर मढ़ा मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव, भारती, उषा देवी, दीपांजलि और अनुराग दीप। ये अगला पत्र आया है मझौलिया पश्चिम चंपारण बिहार से धनराज प्रसाद कुशवाहा, माया देवी कुशवाहा और ज्योति सिंह।

अभी आप सुन रहे थे दाग फिल्म का गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की। गीतकार थे साहिर और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र थे वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और अयूब खान। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। चौटाला हरियाणा से ईमेल हमें भेजा है दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा ने। इसी क्रम में यह अगला पत्र आया है मोहाल दीवानपुरा राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से विनोद कुशवाहा, नीरज घनश्याम, सावित्री, प्रेम रानी, मयंक, दिव्या और छोटा बाबू कुशवाहा का। यह अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना, मयंक और तन्वी गौहर। यादव रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से राजेश सिंह यादव, रामावतार, यदवीर सिंह, दीपक, राधिका, रामगोपाल, अनुरोध सिंह यादव। ग्राम चुरारी पोस्ट सतारी तहसील कुलपहाड़ जिला महोबा उत्तर प्रदेश से नीरज राजपूत, लोकेन्द्र, प्रेमवती, समर, सौम्या, राहुल और समस्त राजपूत परिवार वाले। इसी क्रम में यह अगला पत्र है ग्राम बेड़री पोस्टगंज जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से महेंद्र चौबे, रमाशंकर चौबे और समस्त चौबे परिवार वाले। ग्राम अजनर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से सुरेश कुमार सैनी, प्रीति राज, दिनेश कुमार सैनी और समस्त सैनी परिवार। ग्रेटर नोएडा कौशल्या पार्क तीन जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से जगराज प्रसाद, शिव प्रसाद, गुरु प्रसाद, प्रेम, शुभी, रवि कुमार और अजय। ग्राम पोस्ट पापेट तहसील सागर जिला सागर से अशोक कमल नामदेव, मदन अनुरथ, तुलसी, राकेश, प्रकाश और राजा नामदेव। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में प्रेम रोग फिल्म का गीत। गीतकार हैं पंडित नरेन शर्मा और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता मित्र हैं ग्राम मवैया पोस्टमलिया जिला छतरपुर से लवकेश कुमार राजपूत, सर्वेश राजपूत, बाल कुमार और उनके मम्मी पापा। ग्राम गुना वार्ड नंबर 15 तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजा राम अहिरवार, राधेलाल, प्रवीण, शारदा, दीपा, सीमा, निशु और राखी अहिरवार। भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, आयुषी, सुधा और पंकज। ग्राम खकल तहसील कौंच जिला जालौन से दीपक गुर्जर, सत्यम गुर्जर, अंशराज और इनके मम्मी पापा। कुशवाहा रेडियो श्रोता संघ मोहाल दीवानपुरा राठ जिला हमीरपुर।

प्रदेश से विनोद कुशवाहा, दिव्या और नीलम। यह अगला पत्र में प्राप्त हुआ है रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, प्रतीक्षा पाल, दीक्षा का। आदर्श रेडियो श्रोता संग्राम मिर्तला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से राम जीवन राजपूत, राम मिलन, राम आश्रय, भूरा, सूर्यांश, ऋषिकांत और समस्त राजपूत परिवार वाले। इसी क्रम में अगला पत्र है स्नेह रेडियो श्रोता संग्राम मिर्तला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, रश्मि दीपिका, सुषमा, देवांश भास्कर, नंद किशोर और ब्रजनंदन। और इसी क्रम में ये अंतिम पत्र

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के गाए प्रेम रोग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनभावन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहती है डॉक्टर प्रणति चतुर्वेदी। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन, मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा

0: सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilukar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation.